0: चांदनी रातें।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है। जबरदस्त

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: Radio Olive, your happiness frequency.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

सूरत दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। बिंदास मॉर्निंग।

Radio Olive. 106.3 Radio Olive. Gio Bindas. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है, जबरदस्त है।

0: दद्दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओली 106.3 FM जियो बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

0: आप सभी को एक सुपर डुपर गुड मॉर्निंग। स्टेशन क्लॉक में 6:07 हो रहे हैं और हम दोनों साथ साथ यहाँ पे पहुंच चुके हैं आपके साथ बात करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए, गाने सुनाने के लिए, गुनगुनाने के लिए और ढेर सारे किस्से, खबरें, कहानियां शेयर करने के लिए, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके साथ वक्त बिताने के लिए। यह बिंदास मॉर्निंग्स और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव,
1: और मैं हूं आपकी कशिश।
0: और यहां पे जो है हम पहुंच चुके हैं बातें लेकर, कहानियां लेकर, किस्से लेकर। अब आइए भाई अपने मैसेजेस का सिलसिला शुरू कर दीजिए, क्योंकि आज वीकेंड है और यहां पे वीकेंड जैसे ही आया तो कशिश ने शुरू कर दिया।

0: भाई ये टिंगलिंग लिंग जो है ना,
1: बस यही फीलिंग है देखो,
0: ये शुरू हो जाता है संडे से कि बस वीकेंड आ
1: गया
0: है, ये तब से शुरू होता है टिंगलिंग टिंगलिंग टिंगलिंग जो है। बट यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि यार देखिए बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ हम आए हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है इस वीकेंड में होने वाली है, सारी डिटेल्स जो है हम आपको देंगे। बट उससे पहले मैं बता दूंगी यार, यहाँ पे आपको अपने मैसेजेस जरूर भेजने हैं, अपने गुड मॉर्निंग कोट्स भेजने हैं, गुड मॉर्निंग मैसेजेस भेजने हैं, हाल कैसा है बताना है, इरादे क्या है बताना है, क्योंकि बाबू मोशाय इरादे बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सोचा ना अभी बिंदास बोलूंगा?
1: नहीं सोचा
0: तो बोल
1: दे। मैं तो अभी तक 6-7 में अटकी हुई थी, 6-7 पर अब 6-8 हो गया है,
0: 6-8 हो चुका है तो कोई बात नहीं। और ये भी याद दिलाएंगे कि मॉर्निंग जो है सिर्फ गुड नहीं,
1: बिंदास होनी चाहिए। मैंने बोला
0: ओके ओके, बहुत बहुत बढ़िया, प्राइज दे दो राजबीर, प्राइज लेके आ जा जरा।
1: आप तो बस प्यार से बात कर ले सुदेव, यही काफी है।
0: क्या बात है, क्या बात है। देखिए चंबा यहाँ से तो 3,000 किलोमीटर दूर है। हाँ, ये मैंने एक अनुमान लगाया है, गलत भी हो सकता है।
1: देखिए चंबा जो है अभी हमने जो है वीकेंड को नाम दिया हुआ है। कितनी दूर है, बस आ गया।
0: अब वीकेंड आ ही गया है तो फिर मन में ये ख्याल भी आएगा,
2: तुम पे ही प्यार आ गया, हाय फिर एक बार आ गया।
0: बार बार आएगा, हर हफ्ते आएगा, क्योंकि जीते तो हम वीकेंड में तो यही बात बोलते हुए शुरू करते हैं एक बहुत ही प्यारा सा आज का क्यूट सा जुजुडू सा बिंदास मॉर्निंग सोनू निगम की आवाज में, जिन्नी वेट सनी मूवी का ये गाना है। स्टे ट्यून्ड, यह रेडियो ऑलवे 106.3 एफएम।
1: जियो बिंदास।
0: तो जैसे कि हमने बोला भाई, मैसेजेस भेज दीजिए 3311106 पर।

0: Bag. Yes, the most awaited safari items for Qatar Riyal 10, 20, 30 is back on all safari outlets. Save big on categories like bakery, fresh food, groceries, household, electronics, cosmetics, toys, ready-made and IT and everything else starting from May 4th. Don't miss out. Visit your nearest safari hypermarket today and get a chance to win 30 best-tuned cars.
1: Safari. World-class shopping experience. Doha, Qatar.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: This is Deepika Padukone.
4: Deepika Padukone.
3: Radio Olive 106.3.
5: I'm a number one. Radio Olive.
6: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.
7: आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में
8: बिंदास मॉर्निंग
9: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पांसिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक

0: हर्षदीप कौर की आवाज में रॉक स्टार मूवी का गाना हमने सुना। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम बिंदास मॉर्निंग में। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कशिश।
0: तो भाई यहाँ पे स्टेशन क्लॉक में 6:20 हो रहे हैं और हमारे पास थोड़े मैसेजेस भी आए हैं, जरा एक एक करके मैसेजेस देख लेते हैं।
1: यस गाइस,
0: ऋषिन का मैसेज आया है, उन्होंने एक फोटो भेजा है जिसमें लिखा है गुड मॉर्निंग, एवरी लिटिल स्माइल कैन टच समबडीज हार्ट, नो वन इज बॉर्न हैप्पी बट ऑल ऑफ अस आर बॉर्न विद द एबिलिटी टू क्रिएट हैप्पीनेस। हैव अ ग्रेट डे करिए। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग जियो बिंदास, हैप्पी वीकेंड लिखा है उन्होंने। तो आपको भी ऋषिन बहुत ही बढ़िया और बिंदास मॉर्निंग में विश करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि दिन जो आपका काफी बढ़िया जाए। और चंदन भाई का मैसेज आया है, चंदन जी ने बोला है कि गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल सोल्स, हैव अ बिंदास मॉर्निंग करके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आपको भी काफी बढ़िया और बिंदास मॉर्निंग जो है हम विश करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपका दिन जो है एकदम बढ़िया जाए। निशांत कुमार जी का मैसेज आया है, उन्होंने हैप्पी वीकेंड बोला है। उसके साथ साथ जुल्फी भाई का मैसेज आया है, जुल्फी भाई ने फोटो भेजा जिसमें लिखा है कि गुड मॉर्निंग, यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट टू इंस्पायर अदर्स, यू जस्ट नीड टू बी ऑनेस्ट। बिल्कुल सही बात कही है,
1: right.
0: ये बहुत ही सटीक बात कही गई है, शत प्रतिशत आपसे हम सहमत है जुल्फी भाई। थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए और आपको भी काफी बढ़िया और बिंदास दिन हम विश करते हैं। सबिया साची रुद्रा का मैसेज आया है, उन्होंने लिखा है हाय सर एंड मैम, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू सर एंड मैम, थैंक यू करके।
1: गुड मॉर्निंग सर एंड मैम बोला यार, तो
0: इतनी इज्जत तो खुद के घर में नहीं मिली,
1: खुद के घर में मुझे किसी के घर में नहीं मिली।
0: नहीं मुझे भी नहीं मिली।
1: मुझे ऐसा लगता है मुझे 2-4 साल में मिलने वाली थी, बट अब मिलने लग गई ना, इस अच्छा लग
0: जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर मैम बोल दिया यार, थैंक यू सो मच।
1: हमें जो है एक करक के लिए लड़ते हुए जब देखेंगे तो पता चलेगा कि सर मैम,
0: इन्हें सर बोला हमने, इन्हें मैम बोला, मतलब सर तो फिर भी मान सकते, इन्हें मैम बोला।
1: कोकोनट जूस के लिए लड़ते
0: हैं, ऐसे
1: कोकोनट
0: वाटर के लिए लड़ रहे हैं। देखो देखो, लड़ने के लिए रीजन सही होते हैं लोगों को, अब दुनिया भी तो वही कर रही है वैसे। हैप्पी थर्सडे करके मैसेज आया है अबरार भाई का, लिखा है लाइफ इज बेटर व्हेन यू क्राई अ लिटिल, लाफ अ लिटिल एंड आर थैंकफुल फॉर एवरीथिंग यू हैव गॉट करके। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, बिल्कुल सही बात कही है, ग्रेटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। और शशिकांत पाटिल जी का मैसेज आया है जिसमें लिखा है नोइंग व्हाट आई फील टू बी इन पेन इज एग्जैक्टली वाई वी ट्राई टू बी काइंड टू अदर्स। सुप्रभात, मेक इट अ मेमोरेबल।
1: सुप्रभात, कितने दिनों बाद सुना मैंने सुप्रभात। सही
0: में, मैंने लास्ट टाइम स्कूल में ही सुना था, वो भी स्पेशली तब
1: जब हिंदी डे पे,
0: मैंने संस्कृत के टाइम पे।
1: ओह,
0: संस्कृत जब हमारे स्कूल में असेंबली ना 3 languages में होती थी।
1: ओह, ओके।
0: तो मंडे जब स्कूल खुलता है वो नॉर्मल इंग्लिश में होती है, बाकी प्रेयर वेयर सब जो है वो तो जो हिंदी में ही है उसमें ही है, बट बाकी असेंबली इंग्लिश में कंडक्ट की जाती है। ट्यूसडे वो हिंदी में होती है, वेंसडे वो संस्कृत पर आती है।
1: ओह माय गॉड,
0: तो वो बहुत ही अलग ही एक वाइब होता है, छात्र छात्र आके
1: छात्र छात्र। सो पता है हमारे यहाँ क्या होता था कि हिंदी दिवस पे स्पेशली जब बहुत ज्यादा वो होता है ना कि ओह हिंदी में बात करेंगे आज, तो स्पेशली जो है बोला जाता था कि आज पूरे दिन हिंदी में बात करेंगे, तो जान बुझ के हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हर चीज हिंदी में बोले, जो चीज हिंदी में है भी नहीं, ट्रेन की कॉन्वर्सेशन है भी नहीं, लेकिन बस पता है कि लोहपत गामिनी बोलते हैं। तो इसीलिए ट्रेन को जानबूझी कॉन्वर्सेशन में लाएंगे।
0: आपको पता है कल मैं लोहपत गामिनी के बारे में,
1: नहीं नहीं, आपको पता है, आपको पता है कि आज ना मैं अपने दोपहिया वाहन से नहीं आया, अपने दोपहिया वाहन से आया, लोहपत गामिनी से नहीं आया, डायरेक्टली बोल सकते थे ना,
0: सीधा बोल सकते कि रेलगाड़ी से नहीं आए,
1: नहीं सीधा बोल सकते थे कि आज मैं अपनी 2-wheeler से
0: नहीं आया,
1: 2-wheeler से आया।
0: हाँ, बट वो है ना कि वो
1: नहीं आया ही बोलने, आया ऐसे तो मैं एरोप्लेन से नहीं आई, ऐसे तो मैं स्पेसशिप से नहीं आई।
0: वोकैबुलरी दिखाना होता है ना लोगों को, शो ऑफ करना होता है कि तुम्हें पता है लोहपत गामिनी क्या होता है। नहीं पता, मुझे तो आज पता चला। बट एनीवे, मैं यही बोलूंगा कि बहुत सारी यादें जो है ताजा कर दी हमें इनके मैसेज से, शशिकांत पाटिल भाई के मैसेज। थैंक यू सो मच जी। नाजनी जी का मैसेज आया है, लिखा है बी केयरफुल अबाउट द चॉइसेस यू मेक टुडे, दे डिटरमाइन योर फ्यूचर, गुड मॉर्निंग करके। बिल्कुल सही बात, सटीक बात, आज जो हम करते हैं कल उसका नतीजा हम भुगतते हैं या फिर हम भोगते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो है यहाँ पे नाजनी जी ने बताई। थैंक यू सो मच, आपको भी काफी बढ़िया और बिंदास दिन में विश करता हूँ। और थोड़ी देर में हम आएंगे गानों के उस पार सवाल का सिलसिला लेकर, तैयार हो जाइए ब्लैक बोर्ड स्टोरीज के लिए। अभी यहाँ पे कूल सॉन्ग ऑफ द आवर प्ले करते हैं और कहते हैं
1: जियो बिंदास।
2: ऑसम रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
3: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है ऑसम।

0: Radio Olive, your happiness frequency. 106.3 Radio Olive, Geo Windows. Commercial Bank presents CB 2026 Million Reals Dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
3: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल एवर 106.3 एफएम और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कशिश।
0: और यहां पे अभी स्टेशन क्लॉक में 6:33 हो रहे हैं और मैंने बोला था कि थोड़ी ही देर में जब हम वापस आएंगे तो सवाल का सिलसिला शुरू कर देंगे। तो तैयार हो जाइए, कुर्सी की बीड़ी जो आपने बांध रखी है टाइट कर लीजिए क्योंकि ये है ब्लैक बोर्ड स्टोरीज।
2: रेडियो ऑल ऑफ प्रेजेंट्स ब्लैक बोर्ड स्टोरीज।
0: तो ब्लैक बोर्ड स्टोरीज का सवाल पूछने से पहले मैं जरा वक्त बता देता हूँ। इट इज 6:34 AM। ठीक है, जब भी हम वक्त लिखते हैं कहीं पे भी अगर हमने वक्त देखा होगा तो सुबह के टाइम पे यानी कि दोपहर 12 बजे से पहले इट इज AM एंड 12 बजे के बाद इट इज PM। तो सवाल ये है कि AM और PM का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, AM और PM का फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है तत्काल प्रभाव से, तुरंत से पहले, अभी के अभी आप हमें जो है मैसेज कर सकते हैं और 3311063 ये हमारा नंबर, इस पर आप ऑडियो नोट भेज सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं 4444106 ये नंबर है हमारा जिसपे आप कॉल करके बात कर सकते हैं, जवाब बता सकते हैं। तो कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, सवाल का जवाब बताइए।
1: सवाल जो है आज मैंने सुदेव को इतना बोल दिया कि आप हमेशा टफ क्वेश्चन लाते हो कि वो आज इतना आसान सा सवाल लेकर आए हैं एंड देखो

0: अरिजीत सिंह की आवाज में लूडो मूवी का गाना हमने सुना। आप सुन रहे हो रेडियो 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव।
1: मैं हूं अभी कशिश। और इतना एक्साइटमेंट जो है इतने सारे आंसर्स का गया था कि जो है सुदेव को जो है ठसका सा लग गया, खांसी आ गई। सुदेव पोक्यो, आप पानी पी के आ जाओ, कोई बात नहीं।
0: दो खांसी निकाल दी, सब ठीक हो चुका है। बढ़िया, पानी पीने हम जाएंगे, मगर यहाँ पे भाई बच्चों ने बहुत ही बढ़िया तरीके से पार्टिसिपेट किया है, तो उस एक्साइटमेंट में जरूर है हम। और हमारे पास एक कॉल आया था वैसे थोड़ी देर पहले, जमरीन का कॉल आया था, तो चलिए वो कॉल जरा हम सुनते हैं। हेलो, नाम बताइए।
2: मेरा नाम जमरीन है।
0: जमरीन?
2: यस।
0: जमरीन कहाँ से हैं आप?
2: केरला।
0: केरला से? नाटले वड़ा?
2: नाटले कोईकोड।
0: इन्हीं लोगों की हिंदी ली सुचे हमें। ओके जमरीन, व्हाट्स द आंसर फॉर टुडेज क्वेश्चन?
2: आई डोंट नो इफ इट्स करेक्ट, बट आई थिंक इट्स करेक्ट। इज इट एंटी मेरिडियन फॉर AM?
0: ओके।
2: एंड prime meridian for
0: Zamreen, so in which school are you studying?
2: MES Indian School. I'm on the way to school.
0: And which standard?
2: Seventh standard.
0: Beautiful. Thank you so much Zamreen for calling and answering this question. I hope you have a great day.
2: Thank you, same for you.
0: Take care.
1: Bye-bye. Happy weekend
2: to you too. Bye.
0: बहुत ही क्यूट सा कॉल, बहुत ही क्यूट सी बातें की जमरीन ने। जमरीन के आंसर में एक ही चीज
1: छोटी सी मिस्टेक थी,
0: वो कुछ नहीं है, प्राइम मेरिडियन नहीं है, पोस्ट मेरिडियन। ठीक है, छोटी छोटी गलतियां तो होती रहती, बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी गलतियां होती रहती है समेटा।
1: इतना तो पता था।
0: बिल्कुल। और आदनिया का मैसेज आया है, वो भी जरा सुनते हैं।
3: गुड मॉर्निंग रेडियो ऑलिव।
0: मॉर्निंग।
3: द आंसर फॉर टुडेज क्वेश्चन इज एंटी मेरिडियन फॉर AM एंड पोस्ट मेरिडियन फॉर PM। माय ब्रदर इवन सेज एज अ जोक that AM is after midnight and PM is post midday.
0: ये बहुत ही प्यारी बात है।
1: ये बहुत प्यारी बात है। और इससे ना मुझे मेरा टाइम याद आ गया जब मैं 5th-6th स्टैंडर्ड में थी। अच्छा? तो मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से अपने EVS के एग्जाम में जो है यही लिख दिया था आंसर कि आफ्टर मॉर्निंग।
0: ये रहता है भाई,
1: उन्होंने एटलीस्ट टाइम के हिसाब से आफ्टर मिडनाइट और ये सब लिखा तो है, मैंने तो आफ्टर मॉर्निंग।
0: जी बिल्कुल, यहाँ पे होता रहता है, छोटी गलती किससे नहीं होती, मुझसे भी हुई है, ये वाली नहीं, बहुत अलग हुई है। सच बताऊं, मैंने मतलब मुझे सोशल साइंस पढ़ना बहुत पसंद है, स्कूल में भी मुझे बहुत अच्छा लगता था सब्जेक्ट जो है,
1: वो हमें पता चलता है आपके क्वेश्चन से।
0: बट ये AM PM का जो एब्रीविएशन का जो फुल फॉर्म है ना, मैंने कॉलेज में आके सीखा।
1: मुझे तो सच में यार अभी तक थोड़ी थोड़ी दिक्कत हो जाती थी कुछ समय पहले तक, जब मैं अलार्म लगाती थी।
0: अच्छा।
1: और मैं देख रही हूँ सुबह उठ के यार मैं लेट उठी, अलार्म बजा क्यों नहीं, मैंने तो लगाया था, और वो PM का लगाया होता है।
0: बिल्कुल होता है, ये कई बार हुआ है मेरे से रिसेंटली, परसों कुछ मैं शाम को थोड़ी सी ऐसे सोचा यार झपकी ले लेता हूँ। हाँ। मैंने अलार्म लगाया और लगा के मैं सो गया, बिल्कुल सही PM का लगाया था मैंने अलार्म। बिल्कुल सही था, AM का भी नहीं था, बिल्कुल सही। फिर मुझे ध्यान आया कि मैंने वेनेसडे वाले अलार्म केस में लगा दिया था PM का।
1: ऐसी छोटी छोटी गलतियां देखो होती रहती है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, और अगर हम गलतियों से नहीं सीख रहे हैं तो दूसरी गलती सीख जाएंगे, कोई बात नहीं।
0: एग्जैक्टली। और मुझे को और भी मैसेजेस आए हैं, जैसे कि अमीरा का मैसेज आया है, उन्होंने बोला AM इज एंटी मेरिडियन, PM इज प्राइम मेरिडियन। सरिता जी का मैसेज आया है, सरिता जी ने बोला गुड मॉर्निंग यू बोथ, एंटी एंड पोस्ट मेरिडियन, हैव अ ब्लेस्ड डे करके। थैंक यू सो मच, आपको भी काफी बढ़िया और बिंदास दिन हम विश करते हैं। अली भाई का मैसेज आया है, उन्होंने भी यही मैसेज किया है। और अभी मुझे मैसेज आया है मेहरुनिसा का, जो हमारी सोशल साइंस टीचर भी हैं। कशी एंड सुदेव, ऑसम मॉर्निंग्स यू बिंदास, एंटी मेरिडियम एंड पोस्ट मेरिडियम करके मैसेज भेजा है। ये हम टीचर्स को भी टेस्ट करते हैं कि याद है ना, देख लेना करके। ठीक है। और मालिक भाई का मैसेज आया है, उन्होंने लिखा है द अब्रीविएशन AM स्टैंड्स फॉर एंटी मेरिडियम, व्हिच मींस इट इज द टाइम बिफोर द मेरिडियन लाइन हैज क्रॉस्ड द सन, और द टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड 11:59 इन द मॉर्निंग। PM stands for post meridian, which means it is the time after the meridian line has crossed the sun, or the time between noon and 11:59 at night. और नाम भेजा उन्होंने वखुदुर रहमान करके, थैंक यू सो मच जी। वैसे चैट बॉक्स में मालिक रख रखा था इसलिए मैंने वैसे पढ़ा, सॉरी। वखुदुर रहमान भाई का मैसेज आया, थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए। और इदरीस भाई का मैसेज आया है. इदरीस भाई ने बोला है, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग करके. वालेकुम अस्सलाम भाई, गुड मॉर्निंग. उम्मीद कर रहे हैं कि सब बढ़िया चल रहा है. फोटोज भेज देना जल्दी जल्दी. और वीएसआर मूर्ति सर का भी मैसेज आया है. उन्होंने लिखा है, गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू, हैव अ ग्रेट डे. थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच. आपको भी काफी बढ़िया और बिंदास दिन जो है हम विश करते हैं. और एक और ऑडियो जो है मेरे पास आया है, ये सृष्टि या ध्रुव का ऑडियो है. अनफॉर्चुनेटली ये ऑडियो जो है प्ले नहीं हो रहा है, देयर इज सम इशू. मैं इसे प्ले करने की कोशिश कर रहा हूँ बट ये घूमे जा रहा है, बफर करे जा रहा है. मैं जो भी हो ये इशू रिजॉल्व करने की कोशिश जरूर करूंगा. और उसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि भाई एक बहुत ही प्यारा गाना जो है हम प्ले करने वाले हैं यहाँ पे. और गाना थोड़ा इंटेंस है, इतना आसान गाना नहीं है, थोड़ा इंटेंस है. मूवी के बारे में अगर हम बात करें तो रांझना 2 का सोल सीक्वल जैसे उस नाम पे आया था वो.
1: या जब वो
0: हमें लगा था कि भाई ये तो आग लगा देगा, बहुत बढ़िया रहेगा. मगर जब मूवी देखी लोगों ने, लोगों ने ये सोचा कि हमने खुद को आग क्यों नहीं लगाया.
1: इससे अच्छा तो हम अपने पैसों में आग लगा देते, एक्स्ट्रा पॉपकॉर्न घर पे बैठ के खा लेते, ये मूवी देखने तो ना ही जाते.
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. मगर कोई गल नहीं, तेरे इश्क में जो गाना है ये होगा थोड़ी देर में प्ले होगा. थोड़ी देर में नहीं, अभी हम प्ले करेंगे आपके लिए स्पेशली. तो यही गाना प्ले करते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं
1: जी बिंदास.

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Commercial Bank presents CB 2026 Million Reals Dream.
2: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
1: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
2: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
1: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.

0: दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

0: जॉली एलएलबी का गाना हमने सुना, बहुत ही प्यारी मूवी, बहुत ही प्यारा गाना। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव।
1: मैं हूं आपकी कशिश।
0: क्या हो गया आपको?
1: पता नहीं कैसा सब मौसम हो रहा है, बाहर जाओ तो गर्मी लगती है,
0: अंदर आओ
1: तो ठंड लगती है।
0: उधर खाई
1: कहा? मैंने कुछ नहीं खाया अभी तक।
0: अरे खाई खाई
1: नहीं खाई,
0: अरे वो खाई नहीं, वो गिरने वाली खाई।
1: ओ अच्छा,
0: ये है पंडित हिंदी की, ये कल हमें हिंदी सिखा रही थी।
1: खाई
0: अब समझे?
1: या मैं समझी, पर मुझे ठंड लग रही है। मेरे आउटफिट्स जो है वो पूरे खराब हो जाते हैं। कभी मुझे सुदेव की जैकेट पहननी पड़ती है, कभी मुझे खुद की जैकेट लाके पहननी पड़ती है। ये कैसा मौसम चल रहा है बाहर? टेम्परेचर क्या हो रहा है सुदेव?
0: बाहर का टेम्परेचर भाई अभी 30 डिग्री सेल्सियस दिखाया जा रहा है, और आज का हाईएस्ट टेम्परेचर जाएगा 39 डिग्री सेल्सियस। yes. लोवेस्ट जाएगा 29 डिग्री सेल्सियस। क्या लोवेस्ट? सिर्फ 29 जाएगा, यानी कि इससे 1 डिग्री कम।
1: ये बिल्कुल वैसा ही डिफरेंस है टेम्परेचर्स में जितना मेरे और मेरे पीछे एग्जाम में बैठने वाले इंसान के मार्क्स में होता था। मतलब हम कॉपी करते थे ना एक दूसरे।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा,
1: सेम मार्क्स आते थे हमारे।
0: मुझे उम्मीद है कि आपकी मम्मी सुन रही है ये अमेरिकन आंटी, आप सुन रहे हो ना ये सब?
1: सर मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरी मम्मा जो है वो मेरे बिजनेस और अकाउंट्स के टीचर थे।
0: अच्छा।
1: एंड मैं दो दो टीचर होते थे हमारे।
0: अच्छा।
1: यहाँ सो मैं कभी उनका सेट लेती ही नहीं थी एग्जाम में।
0: अच्छा।
1: मैं हमेशा बोलती थी कि नहीं, आप लोग कहेंगे कि मैंने चीटिंग करी है।
0: हाँ।
1: मुझे पहले से क्वेश्चन पेपर मिल गया है।
0: हाँ।
1: इस वजह से मुझे दूसरी टीचर का
0: सेट चाहिए,
1: सेट चाहिए,
0: और उसमें चीटिंग कर दी थी।
1: हाँ,
0: बहुत बढ़िया,
1: पर वो सेट टफ होता था।
0: अच्छा, इसका तो फिर चीटिंग ला, मतलब
1: मॉम वाला सेट बहुत इजी होता था, एंड उस सेट को जो भी लोग लेते थे
0: हाँ,
1: उनके बहुत अच्छे मार्क्स आते थे।
0: तो आपको कभी लगा नहीं कि यार प्राइड के चक्कर में?
1: लगता था, बट एटलीस्ट चीटिंग के एलिगेशन से।
0: अच्छा।
1: बढ़िया है, मतलब अगर आप मुझे चीटिंग करते हो पकड़ रहे हो तो ठीक है, ठीक है कि हाँ चलो ये कॉपी करके।
0: मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि चीटिंग के एलिगेशन से बचने के लिए आपने डिफिकल्ट वाला सेट लिया और उसमें भी चीटिंग किया।
1: यस, अगर
0: तो बेसिकली आपने क्या किया?
1: अगर आप मुझे कॉपी करते हुए पकड़ते हो तो इट्स ओके, बट मैंने ईमानदारी से पेपर लिखा है, पढ़ के पेपर लिखा है, और मेरे अच्छे मार्क्स आए, फिर भी आप कह रहे हो कि चीटिंग से मार्क्स आए, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। देखो इट्स अ गर्ल मैथ, सो आप ज्यादा दिमाग मत लगाइए। आपको
0: नहीं लगाए? नहीं, मैंने बस पूछ रहा था ऐसे डाउट्स और थोड़े क्लियर करने की।
1: मैं ये बोलना चाहती हूँ, इफ इट्स 32 डिग्री सेल्सियस व्हाई इट फील्स लाइक 16 डिग्री सेल्सियस हियर?
0: क्योंकि स्टूडियो के अंदर एक फिनोमिनन है एसी करके।
1: आप देखिए, इन्होंने एसी की बात करी है। अब जब हम आएंगे नेक्स्ट वीक तो ये पूछेंगे एसी का फुल फॉर्म बताओ।
0: वो तो सबको पता है, एयर कंडीशनर, वो ऐसे थोड़ा ना पूछेंगे। थोड़ा सोचने के लिए मेरा सवाल पूछने का ये एक इंटेंशन रहता है कि अगर चीजें नहीं आती तो हम जान भी लेंगे।
1: yes.
0: और आती है तो याद कर लेंगे।
1: yeah.
0: और अभी एक ही चीज मैं बताना चाहूंगा कि बाहर हवा बहुत तेज चल रही है, 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है। तो सवाल मेरे मन में यही पनप रहा है कि क्या ये हवा कशिश को उड़ा के तो नहीं ले जाएगी?
1: आपको लगता है मुझे कोई भी उड़ा के ले जा सकता है?
0: देखिए मैं इसमें क्या ही कमेंट दे सकता हूँ, जिन्हें पता है उन्हें पता है, अब जिन्हें नहीं पता पूछ लो कशिश से। अब कशिश नहीं बता रही तो छोड़ो फिर।
1: हो गया, गाने सुनाएंगे।
0: चांद मेरा दिल मूवी का गाना सुनते हैं फहीम अब्दुल्ला की आवाज में। Stay tuned, ये रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव।
1: मैं हूँ आपकी कशिश जियो बिंदास।
0: हंसी मजाक में एक चीज भूल गए, फोटोज भेजना मत भूलना। 3311106 पर जल्दी जल्दी।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
3: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
4: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
5: Hello, I'm Neena Gupta.
6: सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3।
7: ऑलिव सुनो।

0: सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल इन 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कशिश।
0: और यहां पे भाई हमारे पास आए हैं थोड़े फोटोज, इदरीस भाई ने जो है हमें फोटोज भेजे हैं और आज काफी अलग अलग एंगल से जो है फोटोज आए हैं। वेस्ट बे एरिया के फोटोज आए हैं और डिफरेंट डिफरेंट एरिया से फोटोज आए हैं। बहुत ही बढ़िया यार, थैंक यू सो मच, बहुत ही मजा आ गया फोटोज देख के। उसके साथ साथ मनोज भाई ने भी हमें फोटोज भेजे हैं। मनोज भाई का जो फोटो आया है काफी बढ़िया, कॉर्निश के वहां से फोटो लिया है यार।
1: Oh my God,
0: बहुत प्यारा।
1: ये सच में आपको जो है वो करो कि आप ही ने कीजिए यार।
0: हाँ,
1: मतलब सच में कितनी
0: प्यारी फोटो है।
1: मैं
0: ये
1: अपने इसको लैपटॉप के
0: वॉलपेपर लगा रही हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सामी भाई का भी आया है, काफी बढ़िया इन्होंने फोटो भेजा है। ये भी बोगनविले का फोटो उन्होंने भेजा है और काफी अच्छा वो, मतलब जो कलर टोन है, जिस कलर टोन में फोटो लेते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने लिखा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, सुदेव भाई और कशिश, कैसे हैं आप लोग दोनों? हम दोनों बिल्कुल बढ़िया हैं,
1: अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। और मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ, अगर ये बोगनविले आपके घर का है तो जब भी नेक्स्ट टाइम आप हमसे मिलेंगे तो प्लीज मेरे लिए इसकी एक वो लेकर आना ब्रांच, मैं इसे लगाऊंगी।
0: मुझे नहीं पता है कि मैं कहां लगाऊंगी,
1: मुझे नहीं पता है कि मैं कहां पे इसे प्लांट करूंगी, लेकिन करूंगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये एक दरखास्त है कशिश की, देखिए अगर आप पूरी कर सकते हैं तो कर दीजिएगा, नहीं तो भी कोई बात नहीं, मलाल तो कुछ होगा नहीं। फिलहाल यहाँ पे जबरदस्त हिट लेकर तो आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम गानों के उस पार वापस आएंगे आपके साथ गुफ्तगू करने के लिए, फिटनेस से रिलेटेड सांस की एक बात करेंगे।
1: सांस की अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, सांस की बात क्यों?
0: ये करनी चाहिए, तो बिल्कुल करनी चाहिए, आपको रेडी करने वाले हैं हम। देखिए आज कशिश का जो है सांस रेडीनेस हम चेक करेंगे कि कितनी सांस रेडी है कशिश जो है। अभी फिलहाल यहाँ पे गाना प्ले करते हैं और कहते हैं
1: जी ओबिंदार।
2: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: बहुत ही प्यारा गाना और काफी इंटेंस मूवी मकबूल, मतलब ये मूवी जिन जिन लोगों ने देखी वो सब जानते हैं कि इसमें इरफान भाई किस लेवल पे परफॉर्म कर रहे थे। और मेरे साथ कशिश है जिसने मकबूल का नाम पहली बार सुना होगा, है ना, सच बताओ।
1: हाँ।
0: है ना,
1: बट ओके वीकेंड है, मुझे वीकेंड के लिए जो है एक नई मूवी का सजेशन मिल गया है।
0: तो जिन्होंने मकबूल नहीं देखी जरूर देखिएगा, बहुत ही बढ़िया मूवी है, मतलब काफी इंटेंस मूवी है। इरफान भाई ने तो अलग लेवल पे उसमें एक्टिंग की है, तो उनको याद करते हुए वंस अगेन वेलकम बैक। ये है रेडियो ऑलवे 106.3 एफएम, मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूँ आपकी कशिश।
0: और यहाँ पे जो है हम फिटनेस के बारे में बात कर रहे, तो चलिए शुरू करते हैं। फिट है तो हिट है,
2: फिट है तो हिट है,
0: फिट है तो हिट है। मैं हमने थोड़ी देर पहले यही बोला था कि हम कशिश को सांस रेडी करने वाले हैं, तो कशिश ने सोचा कि शादी के बाद जो सांस है उसके लिए हम रेडी करें, उनके लिए भी काइंड ऑफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन जो है हम देना चाहेंगे, वो है गहरी सांस लो।
1: गहरी सांस,
0: डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग हमारे ब्लड प्रेशर को कैसे रिड्यूस करता है, इसके बारे में रिसर्च क्या बोलता है, चलिए हम बात करते हैं। रिसर्च दिखाती है
1: ओह माय गॉड,
0: और कंट्रोल्ड डीप ब्रीदिंग नर्वस सिस्टम को काम करता है, स्पेशली जो पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम है उसको एक्टिवेट कर देता है। अब जो बॉडी रिलैक्स स्टेट में आती है तो हार्ट रेट धीरे धीरे कम हो जाता है, ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर टेम्परेरीली लोअर हो सकता है। अब डीप ब्रीदिंग के फायदे क्या क्या है, स्ट्रेस हॉर्मोन्स जैसे कि कॉर्टिसोल जो है वो कम हो जाते हैं, वेगस नर्व स्टिमुलेट होता है, बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड से बाहर आती है और रिलैक्स करती है। और उसके साथ साथ स्टडीज जो है स्पेशली ये बताते हैं कि स्लो ब्रीदिंग पैटर्न्स यानी कि 5 to 6 ब्रेथ्स पर मिनट हमारे सिस्टोलिक बीपी पर पॉजिटिव इफेक्ट दिखाता है। और सिंपल टेक्निक्स क्या क्या है, 4 सेकेंड का इनहेल अपने नाक से, ठीक है, अपने मुंह से सांस नहीं लेना, ये बहुत लोग गलती करते हैं, मुंह से सांस नहीं लेना, नाक से सांस लेना होता है। मुंह से सांस लोगे फेस का स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। हाँ, बिगड़ जाता है लोग का फेस का स्ट्रक्चर, मुंह से सांस नहीं लेना होता है,
1: एंड उससे जो है ऑक्सीजन भी जो है फिल्टरों के अंदर नहीं जाती है, सो भी उससे भी प्रॉब्लम होती है,
0: बहुत प्रॉब्लम होती है। जो लोग रनिंग करते हैं, जो भी एक्सरसाइज करते हैं, ध्यान देना, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, तो मुंह से सांस नहीं लेना, आपको मुंह से एक्सहेल करना है बस, अगर वो कर रहे हो तो। आपको इनहेल हमेशा नाक से ही करना है, तो नाक से इनहेल करना है और 6 सेकंड का एक्सहेल स्लोली, बहुत ही आराम से, और 3 to 5 मिनट्स तक जो है आप इसे रिपीट कर सकते हैं। आप बहुत काम फील करोगे इंस्टेंटली, आपको रिलैक्सेशन और कामनेस जो है ये एक एक्सरसाइज फील करवा सकता है। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डीप ब्रीदिंग एक हेल्पफुल टूल है, लेकिन हाई बीपी का कंप्लीट रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट नहीं है। ऐसा नहीं कि बीपी बढ़ रहा है तो चलिए दवाई नहीं खाएंगे, सांस ले लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना होता। आपको जो दवाइयां अगर डॉक्टर ने बताई है वो लीजिएगा, मगर अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस अगर आप लेकर आएंगे, ऐसे ऐसे एक्टिविटीज आप शुरू करोगे, तो आपके मेडिकेशन को ये और हेल्प करेगा, पॉजिटिवली हेल्प करेगा। और धीरे और कंट्रोल ब्रीदिंग बॉडी को रिलैक्स सिग्नल भेजता है भाई, छोटी जो मोटी बात तो यही है, और रिलैक्स्ड बॉडी बीपी नेचुरली काम ही
1: काम करता है यार, मतलब बढ़िया है। अगर आपको ऐसा थोड़ा सा आपको हाइपरटेंशन जैसी सिचुएशन लग रही है, तो आप जो है डीप ब्रीदिंग कीजिए, उससे आपकी बॉडी को काफी हेल्प होगा, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बढ़िया हो जाएगा। एंड मुझे जो है अब रियलाइज हो गया कि मुझे सांस की दिक्कत है।
0: Yes, और
1: मैं सांस लेती हूँ और खर्चा कर देती हूँ।
0: अरे अरे अरे अरे अरे और इसमें एक और छोटा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि सांस जब हम अंदर लेते हैं तो पेट बाहर आना चाहिए, सीना नहीं हिलना चाहिए। हमें बचपन से

0: सीने के अंदर सांस भरना होते, नहीं भाई सांस लेते वक्त पेट बाहर आ जाना चाहिए, ऐसे लोगे तो ही करेक्ट सांस,
1: राइट,
0: तभी प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो आपकी बॉडी को भी मिलेगा।
1: अब मैं जितनी बार सांस ले रही होती हूँ मुझे कॉन्शियसली ब्रीथ कर रही हूँ, बढ़िया मस्त,
0: बहुत अच्छी बात है। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं, नीरज श्रीधर और तुलसी, लेजेंडरी तुलसी कुमार की आवाज में सुनते हैं बिल्लू मूवी का गाना लव मेरा हिट हिट। स्टे ट्यून्ड, यू हैव रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM।

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
2: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो भाई कशिश जो है जल्दी से चाय पीने गई है, तो मैं भी जरा कशिश को अकंपनी करके आता हूँ। मगर जाने से पहले मैं छोटा सा एक खबर जो है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट जो है आपको देना चाहूंगा। अमीर कप फाइनल अल सद और अल घराफा के बीच में होने वाला है। सैटरडे को होने वाला है मैच खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में शाम 5:30 बजे। चाय छोड़कर कशिश यहाँ पहुंच चुकी है।
1: चाय बाद में, मुझे मैच के बारे में जानना है।
0: मैच के बारे में जानना है।
1: एक्साइटेड।
0: ओके, तो स्टेडियम के गेट्स और फैन जोन्स जो है 2:30 बजे से खुल जाएंगे, जहां डीजे म्यूजिक, फूड, एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज बहुत ही बढ़िया तरीके से होंगी। ये मिनी फेस्टिवल जैसा एटमॉस्फेयर जो है बनाया जाएगा। ऑर्गेनाइजर्स ने फैंस को मेट्रो यूज करने की सलाह दी है, खासकर दोहा मेट्रो गोल्ड लाइन के स्पोर्ट सिटी स्टेशन को, क्योंकि ये सबसे इजी ट्रैवल ऑप्शन होगा। और कार से आने वालों के लिए बड़े पार्किंग एरियाज और कारवा टैक्सी के लिए डेडिकेटेड एरिया जो है यहाँ पे डिजिग्नेट किए गए हैं। और फैंस के लिए वॉकिंग डिस्टेंस कम और पानी के अरेंजमेंट्स भी यहाँ पे की जाएंगी। मैच के दौरान फैंस के लिए 73 प्राइजेस रखे गए हैं, जिसमें 2 कार, आईफोन्स, टिकट्स और ट्रैवल टिकट्स शामिल हैं। यानी कि पूरा इवेंट जो है कार्निवल एक्सपीरियंस बनने वाला है।
1: यस गाइस, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं। एंड सुदेव, आप मुझे ले जा रहे हो ना? आज का लंच मेरी तरफ से।
0: आप बताइए मुझे, मैसेज करके कशिश को ले जाया जाए या ना ले जाया जाए?
1: प्लीज, हाँ बोला।
0: 3311063 पर स्टे ट्यून्ड, रेडियो ओलिव 106.3 एफएम।
1: जी बिंदास।

0: रेडियो ऑन योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरेडू ऐप पर। ऑफर वैलिड है 31 मई तक। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू।

0: धुरंधर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

0: Bag. Yes, the most awaited safari items for Qatar Riyal 10, 2030 is back on all safari outlets. Save big on categories like bakery, fresh food, groceries, household, electronics, cosmetics, toys, ready-made and IT and everything else starting from May 4th. Don't miss out. Visit your nearest safari hypermarket today and get a chance to win 30 best-tuned cars.
1: Safari, world-class shopping experience, Doha, Qatar.
2: Commercial Bank presents CB 2026 Million Rials Dream.
3: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
2: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
3: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
2: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा coupon or mega draw ticket.
4: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
5: Namaskar, my name is Ashish Vidyarthi and you are listening to Qatar's topmost Hindi FM channel 106.3 Radio Olive Jio Bindas.

0: मेरा मतलब अनगिनत तरीके से जो है इस मूवी के नाम को बोला जा रहा है, एक ही बात को बोला जा रहा है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस तक थक चुका है। और इस गाने के बारे में अगर मैं बोलूं तो हम दोनों को बोले जा रहा है भाई, हम दोनों को क्या,
1: हम वो तो बताए नहीं। दोनों को बहुत सारा प्यार आप लोग दीजिए और
0: जी प्लीज प्लीज ये तो आप दे ही दीजिए। वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूँ आपकी कशिश।
0: खो गई बेचारी हम दोनों को।
1: अरे यार देखो क्या हो रहा है ना कि अभी मैं यहाँ से जाने के बाद इतना ज्यादा थक जाती हूँ कि मैं मैच नहीं देख पा रही हूँ।
0: अच्छा।
1: मतलब सोचो आप जो इतना अडल्टिंग इतनी भी नहीं हुई करनी थी कि अपना फेवरेट काम ही ना कर पाओ, तो बस मैं देख रही थी कि कल के मैच में क्या कुछ हुआ ताकि हम सबको बता सके एंड जो है खुद भी जान सकूं मैं। पता चल चुका है मुझे, हैदराबाद और पंजाब के बीच में मैच था एंड हैदराबाद जो है वो 33 रन से जीत गई।
0: क्या बात कर रहे हैं,
1: मतलब जो हम कल बात कर रहे थे कि यार हैदराबाद ऊपर आ सकती है अगर जीत जाए तो, वरना पंजाब अपनी जगह पे रहेगी, फर्स्ट पोजीशन पे मेंटेन करके
0: जी।
1: पंजाब को जो है मुझे लगता है नजर लग गई है किसी की।
0: मुझे भी लग ही रहा है। अगर हम अभी देखें तो एसआरएच सीधा, मतलब हैदराबाद एकदम से ऊपर आ चुकी है, सीधा ऊपर आ गई है, रन रेट भी उनका बहुत बढ़िया है। साथ ही साथ जो है अगर हम देखें, उन्होंने काफी बढ़िया खेला है यार कल, काफी बढ़िया कमबैक जो है किया है। मैं चाहूंगा कि बाकी सारी टीम्स जो है अपने आने वाले सारे मैचेस अब हार जाएं और चेन्नई जो है वो जीत जाए।
1: तो आप चेन्नई और हैदराबाद को जो है वो खेलते हुए देखना चाहते हो साथ में?
0: नहीं, सारे मैच, मतलब हैदराबाद भी हार जाए।
1: अच्छा,
0: सब हार जाए।
1: अच्छा, सभी हार जाए, बस चेन्नई जीत जाए।
0: चेन्नई जीत जाए
1: बस। कितना कितना सेल्फिश हो सकता है कोई इंसान। आज हम येलो कपड़े पहन के आए तो इसका मतलब हम चेन्नई को सपोर्ट।
0: मुझे एक बात बताओ, कैसे मैं सेल्फिश हो सकता हूँ? मैं जो, मेरी जो चाहत है, जो जो जिस चीज की मैं आस लगा के बैठा हूँ, वो मेरे जैसे लाखों लोगों की चाहत है,
1: करोड़ों लोगों की चाहत है कि बैंगलोर जीते।
0: बिल्कुल भी नहीं है। बैंगलोर में लोग कम, गाड़ियां ज्यादा है। क्या बात कर रहे हो आप? ठीक है
1: गाइस,
0: रात के टाइम पे भी ट्रैफिक नहीं होता।
1: ठीक है, देखिए मैच जो है वो किसी भी टीम का हो, हमारे बीच में यही वो चलती रहती है डिबेट की दोनों में से कौन बेहतर है, चेन्नई या बैंगलोर। हम कल के मैच के बारे में बात करेंगे बाद में, लेकिन आप पहले हमें मैसेज कीजिए कि आपको क्या लगता है, चेन्नई की टीम बेटर है या बैंगलोर की टीम बेटर है।
0: अच्छा,
1: आज तो फैसला हो ही जाए।
0: क्या फैसला करोगे आप?
1: की
0: अच्छा मुझे बताओ कि बैंगलोर की जर्सी में कितने स्टार लगे हैं?
1: एक्सक्यूज मी,
0: हाँ क्या हो गया?
1: देखिए हमारे टीम के पास एक स्टार है और वो है कोहली, और वो काफी है।
0: जर्सी में कितने स्टार लगे हैं?
1: एटलीस्ट 7 तो नहीं होंगे, वरना बोल देंगे थाला फॉर अ रीजन।
0: नहीं, बन ही नहीं सकते 7 तुम्हारे लग नहीं रहे लक्षण देख के। बट हमारे तो 2 और हो जाए तो 7 हो जाएंगे बस। यानी कि 5 स्टार है वीरो, 5 स्टार, कोई बात नहीं होता है, कोई बात नहीं होता है। वैसे गाना प्ले करते हुए आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर बाद कल के मैच की बात करेंगे यहाँ पे। फिलहाल यहाँ पे कूल सॉन्ग ऑफ द आवर, स्टे ट्यून्ड, ये रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम।
1: कूल सॉन्ग रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: Your favorite radio station, Radio Olive 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो Ooredoo ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद Ooredoo.
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग. मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर. मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा.
3: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस. सेव मोर, ड्रीम बिगर. विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक.

0: AR रहमान और कार्तिक की आवाज में धक्का लगा बुका युवा मूवी से। जिन्होंने युवा मूवी नहीं देखी, आपको देखनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया मूवी, बहुत ही गजब मूवी, अपने वक्त से बहुत आगे थी ये मूवी। बेसिकली मूवी जो है तमिल में एक मूवी आई थी आयुधा एर्थ करके, उसका जो है रीमेक है, हिंदी रीमेक है ये, मगर काफी बढ़िया मूवी यार, आपको देखना चाहिए। सही में ये मूवी जो है आपको इंस्पायर करेगी। और मैंने तो तमिल देखा था इसका, जिसमें माधवन है, सूर्या है, और अलग अलग लेवल का।
1: सो यानी इस वीकेंड पे आपने मुझे दो मूवीज बता दी है जो मुझे देखनी है। फर्स्ट मकबूल एंड सेकेंड इज युवा।
0: तो देखिए यहाँ पे यही चीज हम बताने के लिए आपको कहते कि आप इस वीकेंड में क्या क्या तरीके से एंजॉय कर सकते हैं और किस तरीके से आप जो हैं अपने इस वीकेंड को कैसे स्पेंड कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। थोड़ी देर में करेंगे, मगर यहाँ पे गेम का जो है डिस्कशन बाकी रहता है। तो शुरू करते हैं, आज कौन से दो धुरंधर हैं जो भिड़ने वाले। तो आज भाई मैच होने वाला है बैंगलोर
1: और लखनऊ,
0: लखनऊ का। यानी कि इससे इजी रोस्टर हो ही नहीं सकता, इससे इजी मैचअप कोई हो ही नहीं सकता
1: यार। देखो आप ना ऐसे बोल के नजर मत लगाओ, हम सब बैंगलोर फैंस जो है
0: नहीं, लखनऊ के लिए हारने के लिए मैच इससे इजी कुछ हो नहीं सकता।
1: गुड,
0: ठीक है, समझ गया ना।
1: यस
0: उल्टा हो जाए हाँ तो
1: सो स्वीट हुआ।
0: या आई नो, फिंगर्स क्रॉस करके ना।
1: या
0: तो आज मैच होने वाला है लखनऊ और बैंगलोर के बीच में। विन प्रोबेबिलिटी जो बताया है 60% बताया है बैंगलोर का, 40% बताया लखनऊ का। तो मुझे तो भाई AI से पूछना है कि तुम्हें 40% कॉन्फिडेंस है लखनऊ में।
1: AI भी जो है वो नजर नहीं लगने देना चाहती, इससे थोड़ा सा लेकर वो चल रही है कि कोई नहीं।
0: देखते हैं। वैसे अभी जो लोग हमें सुन रहे हैं यार, आप बताओ आपके हिसाब से क्या लगता है, कौन जीतेगी आज, बैंगलोर या फिर से बैंगलोर? तो
1: बैंगलोर।
0: तो बताइए आपके फेवरेट्स कौन है इस मैचअप में, लखनऊ या बैंगलोर? लखनऊ के टुंडे कबाब जीतेगी या बैंगलोर का सिलिकन वैली, आज बताओ आप।
1: खाने के साथ अपने काम को जो
0: नहीं यार, बैंगलोर में मैं क्या ही बताऊं खाने के लिए। साउथ इंडियन खाना है जो ऑलमोस्ट हर स्टेट में कॉमन ही है, और मुझे एक बैंगलोर का ट्रेडिशनल डिश तो नहीं पता, बट यार बैंगलोर की मेघना बिरयानी बहुत फेमस है। तो बैंगलोर अगर कोई जा रहा है जाएगा, मेघना बिरयानी ट्राई करना, बहुत बढ़िया है, बहुत ही मस्त चीज है। आप एक बार खाओगे, बार बार खाओगे, आपको अच्छा लगेगा। ये मैं तो ऐसे बता रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ टाइम गया हूँ बैंगलोर में। मगर अगर कोई बैंगलोरियन मुझे सुन रहा है तो मैं चाहूंगा कि आप भी प्लीज सजेस्ट करें कुछ जगह। बिल्कुल आइकॉनिक जगह जो बैंगलोर में है, रामेश्वरम कैफे एक है, और जैसे कि मैंने बोला मेघना बिरयानी एक है। आप बताइए आपके हिसाब से मस्ट विजिट आइकॉनिक बेंगलुरु प्लेसेस कौन कौन से हो सकते हैं,
1: कौन कौन सी हो सकती है। आज का मैच जो है वो कहाँ देखने का प्लान है, और वीकेंड भी है, तो फिर क्या कुछ स्पेशल कर रहे हो, वो सब भी आप हमें बता सकते हैं। पहले तो सबसे पहले आकर चैट पे जो है बैंगलोर की तारीफ कर दो।
0: यस 3311063 पर आप मैसेज करिए, बताइए अपने हाल, अपने सपोर्ट के बारे में, किस टीम को आप सपोर्ट कर रहे हो, और अगर आप एक बैंगलोरियन हो तो आपके बहुत ही मस्ट विजिट आइकॉनिक प्लेसेस जो है बताइए। अभी यहाँ पे तेरे ना लव हो गया मूवी का गाना प्ले करते हैं श्रेया घोषाल और आतिफ असलम की आवाज में। बहुत ही प्यारा गाना यार, बहुत ही प्यारा गाना। चलिए इसे एंजॉय करते हैं एक साथ बैठकर, और कहते हैं
1: जी बिंदास।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Commercial Bank presents CB 2026 Million Rials Dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: टफ काम और भी आसान. कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स. मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले. विजिट कार्मल ग्रुप नाउ.
3: आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में. बिंदास
4: मॉर्निंग, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स. बिंदास मॉर्निंग, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर. मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा.
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस. सेव मोर, ड्रीम बिगर. विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक.

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो बिंदास मॉर्निंग्स ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कशिश आता।
0: क्या हो गया कशिश? बहुत
1: कितनी जल्दी में आई नो वीकेंड आ रहा है लेकिन इतनी जल्दी में थोड़ा रहना होता है।
0: नहीं भाई,
1: आई नो बैंगलोर का मैच देखने के लिए लेट हो रहे हैं आप लेकिन वो मैच अपने वक्त से शुरू होगा।
0: देखो जब बैंगलोर का मैच चल रहा होगा ना, मैं खर्राटे मार के सो रहा हूँ। ठीक है, खर्राटे मार के।
1: ऑब्वियसली ये जो है इंटरेस्टिंग मैच जो है वो देखना ही नहीं चाहते हैं। और वैसे भी बैंगलोर तो जल्दी मैच खत्म कर देती है ना जीत।
0: वही मजा नहीं आता ना उनका मैच देख के। आज क्या पता लखनऊ बाजी पलट दे। बट एनीवे,
1: अच्छा बोलिए प्लीज।
0: यहाँ पे बाजी पलटेगी नहीं पलटेगी ये नहीं पता, मगर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट जो है आपको हम बताना चाहेंगे। और अपने जो दोस्त हैं आपके, जो लोग ड्राइव पे निकलते हैं स्पेशली वीकेंड्स में, उनके लिए भी बहुत खास खबर है। तो हमें एक खबर मिली थी नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स के बारे में। आज से जो है अगले वीक के स्टार्टिंग तक नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स जो है काफी तेजी से बहेंगे। आज सुबह भी जब मैंने बोला था वेदर अपडेट में, बोला था कि 20 किलोमीटर की आवर पर रफ्तार से जो है हवा बह रही है। तो देखिए कशिश को उड़ा पाएगी नहीं उड़ा पाएगी ये तो हम नहीं जानते, मगर अगर धूल उड़ेगी तो आंख में धूल जा सकती है, विजिबिलिटी इश्यूज हो सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं
1: और
0: जियो
1: बिंदास।

0: पुरंदर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओली 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदे
1: और मैं हूं आपकी कशिश।
0: देखिए, फैशन के बारे में जब भी हम चर्चा करते हैं तो एक सबसे बड़ा जो ट्रेंड हमने नोटिस किया वो ये है कि कुछ पुराने स्टाइल्स जो हैं वो वापस आ चुके हैं। ओवरसाइज ड्रेसेस, बूटकट जीन्स, ये सब जो है वापस ट्रेंड में आ रहे हैं, लोग उन्हें अपना रहे हैं। मगर ये ट्रेंड जो वापस हम अपना रहे हैं उसके साथ साथ वियर्ड चीजें भी कुछ लोग कर रहे हैं। वियर्ड यानी कि अल्ट्रा वियर्ड, जैसे कि हमने देखा कि बैलेंसियागा ने डिफरेंट डिफरेंट कपड़े निकाले,
1: एग ट्रे वाला शू,
0: ये सारी चीजें निकल रही हैं। और एक ब्रांड ने लिटरली टॉयलेट सीट के डिजाइन में बैग बनाया। बहुत ही डेस्परेट अटेम्प्ट टू ग्रैब अटेंशन। बट मुझे कभी कभी लगता है कि यार फैशन के नाम पे लोग कुछ भी कर रहे हैं,
1: कुछ भी कर रहे हैं। लिटरली आप टॉयलेट सीट का बैग तो चलो आप लोग एक बार को फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं। टॉयलेट सीट का कॉफी मग आजकल ट्रेंड में, पता है, और उसमें लोग उसे बस लेकर घूम रहे हैं।
0: okay.
1: उसमें अपनी कॉफी डाल के, लाइक सीरियसली अब अपने टॉयलेट सीट को
0: हम सुबह लोगों को स्कैंडलाइज नहीं करना चाहते, बट या देयर आर सम वियर्ड ट्रेंड्स हैपनिंग इन द फैशन वर्ल्ड। अब कुछ टाइम पहले हमने देखा था एरोप्लेन के मॉडल में जो है बैग्स आ रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि यार जो मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के कि
1: उन्होंने जो है कोल्हापुरी चप्पल लॉन्च की थी, एंड उन्होंने तब माना नहीं था कि ओके ये डिजाइन जो है इंस्पायर्ड है इंडिया से। फिर बहुत सारा बैकलैश जो है उन्हें सहना पड़ा, एंड उसके बाद उन्होंने अग्री किया कि इंडियन आर्टिजन की हेल्प से ही उन्होंने ये बनाई है, एंड नाउ उन्हें इतना प्रेज मिल रहा है, वो अब खुल के जो है एक्सपेरिमेंट कर पा रहे हैं उसके साथ। सो जब फैशन हाउसेज ऐसा करते हैं तो अच्छा लगता है। अभी जैसे हमने जो है रोज की मार्किन को, यानी हेली बीबर को जो है हमने जब मेट गाला पे देखा था, सो उन्होंने एक दुपट्टा जैसा, एक लहंगा जैसा एक आउटफिट पहना था। वो मानने को तैयार नहीं होते कि ब्रांड्स की ये इंडियन से इंस्पायर्ड है, बट वो जो ब्रांड था उन्होंने कहा कि दिस इज इंस्पायर्ड बाय इंडिया एंड इट इज अ स्कैंडिनेवियन स्कार्फ, बट इट कुड बी सेड एज लाइक दुपट्टा।
0: बहुत बढ़िया।
1: सो फैशन जो है वो धीरे धीरे करके इतिहास की तरह, कहते हैं फैशन को, वो खुद को दोहराता है। सो बस ये जो टॉयलेट सीट वाला फैशन है ये ना आए फिर से।
0: ये ना आए, ऐसे दौर नहीं दोहराने चाहिए और ऐसे फैशन भी दोहराने चाहिए। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं
1: जी अविनाश।

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: मैं हूँ अदा शर्मा और आप सुन रहे हैं Radio Olive 106.3.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कशिश।
0: और यहां पे भाई चौंका देने वाली उस बात के बारे में हम डिस्कस करना चाहेंगे जहां पे हमें पता चला है कि इंस्टाग्राम जो है वो फॉलोअर्स को कम कर रहा है।
1: यस,
0: ऐसा हमें सुनने को आया है।
1: जितने भी मेरे जो दोस्त थे ना, जिनको अपने फॉलोअर्स पे बहुत गुरूर था, देखो मेरे तो के में फॉलोअर्स हैं, एंड मुझे पता था कि उन्होंने पैसे देकर फॉलोअर्स बढ़ाए, उन सबके जो फॉलोअर्स हैं वो अचानक से कम हो गए।
0: अच्छा।
1: इसका रीजन ये है कि इंस्टाग्राम ने जितने भी बॉट अकाउंट्स थे उन्हें अचानक से बंद कर दिया, तो सबके ही अकाउंट्स पे जो है फॉलोअर्स का रेट जो है वो कम हुआ है। जितने भी बॉट अकाउंट्स हैं, जितने भी नकली अकाउंट्स थे, वो सब बंद हो गए।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इंस्टाग्राम जो है थोड़ा और ह्यूमन ओरिएंटेड अप्रोच की ओर जा रहा है कि भाई अब जो ओजी क्रिएटर्स हैं, ओरिजिनल क्रिएटर्स हैं, ह्यूमन क्रिएटर्स हैं, वही उन्हीं को ज्यादा जो है मौका मिलेगा, उन्हीं का वर्चस्व आधिपत्य जो है अब इंस्टाग्राम में होगा, ऐसा जो है ग्राउंड सजाया जा रहा है। मुझे चिंता करने की जरूरत है नहीं क्योंकि मेरे हैं ही नहीं।
1: पर देखो जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं एटलीस्ट वो ऑर्गेनिक है,
0: बिल्कुल
1: वो लोग हैं जो हमें देखना चाहते हैं, हमें सुनना चाहते हैं, हमें जानते हैं,
0: बिल्कुल।
1: सो दैट्स ओके।
0: यस, तो यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं
1: जी अविंदा,
2: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव,
1: मैं हूं आपकी कशिश।
0: और यहां पे भाई इस वीकेंड में क्या क्या आप कर सकते हैं उसके बारे में हम जरा दौड़ के बताते हैं आपको। बहुत सारी चीजें हैं जो आप चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अल नोवो सिनेमास में एक बहुत ही बढ़िया चीज आ चुकी है जो है 81। तो 1981 में यूथ वर्ल्ड कप फाइनल में कतर की टीम पहुंची थी। तो उस टीम के जर्नी के बारे में जो है ये एक मूवी है जो आप नोवो सिनेमास में जाके एंजॉय कर सकते हैं। स्क्रीन टाइमिंग जो आप वेबसाइट से चेक कर सकते हो। प्राइस जो है टिकट का वो कतर रियाल 45 से स्टार्ट हो जाएगा। और उसके अलावा जो है बहुत सारे ईद फेयर जो है जगह जगह पे लगे हुए हैं, मार्केट्स लगे हुए हैं, तो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ एक बहुत ही बढ़िया चीज जो चल रहा है फॉन्टेना, जो 31 मई तक चल रहा है, एक काफी बढ़िया वो ट्रैवलिंग वाटर सर्कस जो है आप एंजॉय कर सकते हो। और हयात प्लाजा में सर्कस टेंट में जो है ये फॉन्टेना चल रहा है 31 मई तक जो है ये चलेगा।
1: यस, समर फन बनी ईयर्स वीकेंड जो है, अगर आपके आपके साथ जो है छोटे बच्चे हैं और उन्हें जो है ऐसे फन वीकेंड बहुत पसंद है जहां पर वो बनीज के साथ खेल पाएं, सो तवर मॉल आप जा सकते हैं, वहां पर ये फ्री फॉर ऑल है, आप जाकर अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। एंड अगर कुछ कुकिंग क्लासेस और ऐसा आपका मन है कि फ्लावर अरेंजमेंट और कुकिंग जैसी चीज़ें जो है वो आप करें, सो वो भी आपको बहुत सारी अलग अलग जगहों पर मिलने वाले हैं। अलग अलग मॉल्स में जो है ऐसी बहुत सारी वर्कशॉप्स जो हैं वो लगने वाले हैं। एंड आपको ये बताना है कि आप क्या करने वाले हो।
0: मैं तो भाई मेरा तो बहुत सीक्रेट प्लान है। मैं सोने वाला हूँ। सपनों की दुनिया में खोने वाला हूँ।
1: और मुझे जो है इन्होंने काम दे दिया, 2 मूवीज मैं देखने वाली हूँ। बाकी अगर आपके पास कुछ और अच्छा आइडिया हो तो बता दीजिएगा, मैं कर लूंगी।
0: और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं
1: जी अविनाश।

0: माँ मुझे छोटा एड ब्रेक्स दिखाई दे रहे हैं माँ।
1: All F Short Break.
0: जादू
2: टफ काम और भी आसान। कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
4: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम।

0: तो भाई धीरे धीरे टाटा बवाई करके निकलने का वक्त आ चुका है, 10 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में मुस्कान यहाँ आ जाएगी, तो मुस्कान का खुली बाहों से स्वागत कीजिएगा। जितना प्यार हमें दिया है उतना प्यार मुस्कान को दीजिएगा, मैं तो कहता हूँ उससे ज्यादा दीजिएगा।
1: बिल्कुल, और हमारे लिए थोड़ा और एक्स्ट्रा जमा कर लीजिएगा जो हम वीकेंड के बाद आएंगे तो हमें।
0: बिल्कुल, तो संडे सुबह 6 बजे इसी सीट में हम दोनों पहुंच जाएंगे आपके साथ गुफ्तगू करने के लिए, बात करने के लिए, गाने सुनाने के लिए, गुनगुनाने के लिए, वक्त बिताने के लिए। अभी फिलहाल इजाजत लेते हैं, मगर जाने से पहले यही याद दिलाना चाहेंगे कि अपना ख्याल रखना, अपने खास लोगों का ख्याल रखना, और हमें जरा दुआओं में याद रखना। स्टे ट्यून्ड, आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM।
1: जियो बिंदास, हैप्पी वीकेंड।

0: ड्रिंक्स आएंगे?
1: आएंगे नहीं, आ गए।
2: ऑल एफ शॉर्ट ब्रेक।
3: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो Ooredoo ऐप पर। ऑफर वैलिड है 31st मई तक। एक्सपीरियंस मोर विद Ooredoo.
4: This hour is brought to you by
5: Homes Are Us. We complete your home.

गुड मॉर्निंग, यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है. आपको ये आवाज सुन के समझ आ गया होगा कि आज आवाज में ना थोड़ी ज्यादा खुशी. उसका रीजन है कि आज थर्सडे है एंड एवरी थर्सडे आई हैव समथिंग स्पेशल फॉर यू. एक तो सबसे ज्यादा प्लान्स होते हैं मेरे पास, दूसरा ये कि मेरे पास थर्सडे को एक पॉज लेने का टाइम होता है. मतलब ऐसा लगता है कि आज सारे टारगेट्स खत्म करके बस दो दिन अच्छे से आराम करूं. सो जहां हम लाइफ को रेस नहीं रिदम की तरह ट्रीट करते हैं वो है लाइफ मस्त है. सो आज सुबह एक सवाल मेरे मन में आया, क्या आप उन लोगों में से हो जो मॉर्निंग में फुल एनर्जी के साथ होते हो, या फिर वो लोग जो अलार्म को बंद करके 5 मिनट और मांगते हैं. वैसे बाय द वे आई एम सेकंड वन. मैं हर थोड़ी देर में अलार्म बंद करती हूँ और बस थोड़ी देर और मांगती हूँ. कभी कभी मॉर्निंग ना फास्ट नहीं होती, ब्रेन स्लोली स्टार्ट होता है, कॉफ़ी भी कम जो है काम करती है और मूड भी ऐसे एकदम धीरे धीरे काम करने का मन बनाता है. लेकिन ऑनेस्टली दैट्स नॉर्मल. हर दिन प्रोडक्टिव एनर्जी के साथ स्टार्ट हो जरूरी नहीं है, बट हाँ काम करना जरूरी है, बॉस को रिजल्ट देना जरूरी है, इसीलिए काम तो ऑफकोर्स करनी है. सो थोड़ी देर लगती है बट आ जाती हूँ मैं लाइन पे. बाय द वे आप कौन सी कैटेगरी में आते हो? 3311106 इज माई नंबर. यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।

0: सो बेसिकली आज मैं आपको बताती हूँ कि कतर स्पोर्ट्स वर्ल्ड में कल जो था फुल सेलिब्रेशन मोड था. सो सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है. अल अराबी ने कल 27th अमीर बास्केटबॉल कप जीत लिया है और वो भी डोमिनेटिंग स्टाइल में. फाइनल था अगेंस्ट अल साद और स्कोर 84-63. लेकिन स्कोर जितना सिंपल लग रहा है मैच उतना ईजी नहीं था. स्टार्टिंग में दोनों टीम्स काफ़ी कॉम्पिटेटिव थी लेकिन थर्ड क्वार्टर में अल अराबी ने जो कम बैक एनर्जी दिखाई दैट चेंज्ड एवरीथिंग. 32-9 मतलब डिफेंस भी सॉलिड और साथ में अनस्टॉपेबल एनर्जी और स्टार ऑफ द मैच ऑफकोर्स. यहाँ पर इतने सारे पॉइंट्स इतने सारे रिबाउंड्स और असिस्ट के साथ मुस्तफ़ा हुसैन जो हैं वो बन गए स्टार ऑफ द मैच. एशियन परफॉर्मेंस जो सिर्फ स्कोर नहीं करता मतलब मोमेंटम भी क्रिएट करता है और मुझे ऐसा लगता है कि और इस विक्ट्री के साथ ना अल अराबी ने डोमेस्टिक ट्रेबल जो है वो कंप्लीट किया है. मतलब एक सीजन मल्टीपल टाइटल्स और इसी के साथ मुझे लगता है फुटबॉल जितना लाउड नहीं था लेकिन पैशन उतना ही रियल था. सो ये तो बास्केटबॉल सेलिब्रेशन था पर इसी के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी है. बाय द वे आप मुझे बताओ कि इस वीकेंड आपके क्या प्लान है. 3311063 इज माय नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.
1: Awesome. Radio Olive पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.

0: 26 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।

सो कतर का जो क्रिएटिव सीन है वो अब धीरे धीरे दुनिया को इम्प्रेस कर रहा है. दोहा फिल्म इंस्टीट्यूट के सपोर्टेड 7 फिल्म सिलेक्ट हुई हैं कांस फिल्म फेस्टिवल 2026 के लिए. सो यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है. और ये स्मॉल अचीवमेंट नहीं है. कांस दुनिया के मोस्ट रिस्पेक्टेड फिल्म फेस्टिवल्स में से एक माना जाता है, जहाँ सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं स्टोरी टेलिंग सेलिब्रेट होती है. और ऑनेस्टली DFI सपोर्टेड जो फिल्म्स हैं मोस्टली कमर्शियल स्टोरीज नहीं होती. दे आर वेरी इमोशनल, कैरेक्टर ड्रिवन और डीपली ह्यूमन. सो एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ. कल एक चीज़ हुई कि मेमोरी और साइलेंस के थ्रू स्टोरी टेलिंग करता हुआ एक सीन था, विच वॉज वेरी वेरी ब्यूटिफुल. और मुझे ऐसा लगता है कि सिनेमा सिर्फ देखने के लिए नहीं होता, एक्चुअली फील करने के लिए होता है. और कतर का ग्लोबल क्रिएटिव मैप पे इतना स्ट्रांगली इमर्ज होना काफ़ी इंस्पायरिंग है, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि गल्फ रीजन को मोस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर से जाना जाता था, अब स्टोरी टेलिंग से भी जाना जाएगा. सो बिल्डिंग सिटीज बनाती हैं और स्टोरीज आइडेंटिटी बनाती हैं. सो दिस इज लाइक वेरी न्यू थिंग फॉर अस. सुन रहे आप रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान. थोड़ी देर में किताब की बात करेंगे. सुनते रहिए रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

0: Radio Olive 106.3 FM. I'm a number one. Radio Olive,
1: I'm a number one. टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063. Life.

0: So, आज एक बहुत ही सॉफ्ट किताब लेकर आई हूँ, बहुत ही पोएटिक और हार्ट ब्रेकिंग भी। यू आर लिसनिंग रेडियो 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। किताब का नाम है द इंग्लिश पेशेंट। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव और ये है बुक इन द फोकस।
1: बुक इन फोकस विद मुस्कान।
0: सो 1992 की बेस्ट सेलर नॉवल जो हर बार ऑस्कर विनिंग फिल्म भी बनी, यू नो बाद में एक्चुअली जब इस पर मूवी बनी तो इसको ऑस्कर मिला। स्टोरी जो थी वो एक बैकग्राउंड में चल रही थी, लेकिन एक्चुअली ये स्टोरी में कुछ लड़ाई झगड़ा था ही नहीं, ये मेमोरी और लव की स्टोरी थी। एक इंजर्ड पेशेंट अपनी पास्ट मेमोरी स्लोली रिवील करता है, जहाँ पर लव है, लॉस्ट है, रिग्रेट है, उस मेमोरीज में सब कुछ है। कभी कभी इंसान ना बॉडी से नहीं बल्कि मेमोरी से जिंदा रहता है, और इस बुक का राइटिंग स्टाइल बहुत सिनेमैटिक है। आप रीड करते हुए पूरा विजुलाइज करते हो, और सबसे ब्यूटीफुल पार्ट इसकी जो शांति है, जो साइलेंस है, हर इमोशन एक्सप्लेन नहीं होता, कुछ बस फील होते हैं, और यही बुक आपको सिखाती है द इंग्लिश पेशेंट। 1992 की बुक है, मतलब ऑलमोस्ट 34 इयर्स बैक, बट आज भी ये किताब आपको उतनी ही रियल, उतनी ही अमेजिंग लगेगी। ऐसा नहीं लगेगा कि ये 34 साल पहले लिखी गई किताब है। बाय द वे, आई विल बी राइट बैक और बात करेंगे कुछ मैचेस की। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो ऑलिव और बताइए मुझे कि आपके इस वीकेंड के क्या प्लान है। 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर
2: फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश ये गाना फ्रेश है।
1: फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर
2: ये ग...

सो भाई एक सिंपल सा सवाल मेरे मन में है कि आज जो विराट कोहली हैं वो बैंगलोर को टॉप पर पहुंचाएंगे या निकोलस पूरन जो है वो लखनऊ को बचा पाएंगे, क्योंकि आज लखनऊ वर्सेस बेंगलुरु होने वाला है शाम को। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। यस्टरडे वॉज हैदराबाद वर्सेज पंजाब, जिसने हैदराबाद में अच्छी खासी तरीके से जीत ले ली है। सो इट वॉज 235 रन 4 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में, और उसके बाद पंजाब ने बनाए 202 रन 7 विकेट के नुकसान पर पूरे 20 ओवर में, मतलब काफ़ी डिफरेंस ज़्यादा था। और अब आज के अगर मैचेस की बात करूं तो हैदराबाद और पंजाब के कुछ टॉप मोमेंट्स की पहले बात कर लेते हैं कि भाई कौन कौन से मोमेंट्स थे जो कल सबसे अमेजिंग रहे। सो कॉनोली यानसन ने पंजाब से 7वें विकेट की सबसे बड़ी जो पार्टनरशिप थी वो की थी। बाय द वे इसमें एक नाम है जो बड़ा ही फेमस है, कूपर कॉनोली, जो अगर मैं कॉनोली को कॉलोनी कह दूं तो आप समझ जाना कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। सो यहाँ पर एक्चुअली पंजाब के लिए 7 विकेट की सबसे बड़ी पार्टनरशिप का रिकॉर्ड अपने नाम किया उन्होंने, और दोनों ने मिलकर 68 रन बनाए। उन्होंने आशुतोष शर्मा और शशांक सिंह के 66 रनों की जो पिछली सबसे अच्छी पार्टनरशिप थी उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो 2024 में हैदराबाद के खिलाफ बनी थी। अब यहाँ पर हैदराबाद पंजाब की बात हो रही थी तो पहली पारी में सबसे बड़ा टोटल बना 20 ओवर में 235 रन, और इन दोनों टीम्स के बीच में पहली पारी का सबसे बड़ा स्कोर यही था। पिछला रिकॉर्ड 219 रन का था, और उससे पहले अगर मैं और बड़े रन की बात करूं तो दोनों टीम्स के बीच सबसे बड़े टोटल का रिकॉर्ड है 247 रन का, जो हैदराबाद ने पिछले साल इसी ग्राउंड पर 247 रन चेज करते हुए बनाया था। बट और भी बहुत सारी चीजें इस मैच की जो मुझे बहुत अच्छी लगी। बाय द वे आपको कल के मैच में बेस्ट क्या लगा? 3311063 इज माय नंबर, व्हाट्सएप करके फटाफट से बता दो। सुन रहे आप रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Time check. Brought to you by Danat Al Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलीनियर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
2: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलीनियर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
4: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
5: Hi everyone, I'm Arman Malik, 106.3 FM, Radio Olive, Jio. Bindas.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।

0: सो वी वर टॉकिंग अबाउट मैचेस और आज के मैच के लिए बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं. एवरीबॉडी इज सेइंग कि आज बैंगलोर फिर से जीतेगा और लखनऊ की भी बहुत लोग तारीफ करें. सो यस, टुडे इज बैंगलोर वर्सेज लखनऊ. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है. सो बैंगलोर को पिछले मैच में गुजरात ने 4 विकेट से हराया था. रजत पाटीदार की टीम जो थी वो मैच जीतकर प्लेऑफ की रेस में अपनी जो प्लेस है उसको स्ट्रांग बना रही थी और लगातार 6 हार के बाद पॉइंट टेबल में सबसे नीचे पहुंच चुकी लखनऊ जो है उसके लिए मुकाबला बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था. अभी तक दोनों टीम के बीच में 7 मैचेस हो चुके हैं. लखनऊ ने 2, बैंगलोर जिनकी मैं बात करूं 5 मैचेस जीते हैं. मतलब काफ़ी बड़ा डिफरेंस है. सो वी विल सी कि आज कौन जीता है और आपको क्या लगता है कि भाई कौन जीतेगा इस सीज़न में. लखनऊ के टॉप प्लेयर्स की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है मिशेल मार्श बैटर हैं और प्रिंस यादव एक्चुअली बहुत अच्छे बॉलर हैं. और इसी के साथ अगर मैं बैंगलोरू की बात करूं तो यहां पर विराट कोहली जो है बहुत अच्छे बैटर हैं और भुवनेश्वर कुमार बॉलिंग बहुत अच्छी करते हैं. सो बताओ मुझे आपकी फेवरेट प्लेयर, आपकी फेवरेट टीम ऑन माई व्हाट्सएप नंबर विच इज 3311063. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

0: सो इफ यू लव बुक्स तो मैं आपको बताती हूँ कि कतर नेशनल लाइब्रेरी जो है वो लिटरली ड्रीम प्लेस लग सकता है आपको. कतर नेशनल लाइब्रेरी ये सिर्फ लाइब्रेरी नहीं है.
1: यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM और वक्त हो गया है जोहर की अजान का.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।

वणक्कम, मैं हूं जैकी श्रॉफ। रेडियो 106.3 जे ओबिंदास। ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: सो फिफ्थ और सिक्स को यहाँ पर बहुत सारे स्टार्स जो है वो देखने के लिए मिले थे, डिफरेंट एंड आई वाज सो एक्साइटेड. मुझे बड़ा अच्छा लगता है स्टार्स देखना, पर वो कतर के कुछ डिफरेंट पार्ट्स में ही जाकर आपको एग्जैक्टली विजिबल होते हैं. सो वी वर टॉकिंग अबाउट दैट कलर परसों, लेकिन आज मैं आपको कुछ और बताने वाली हूँ. बाय द वे, अब कतर का जो वेदर है वो ऑफिशियली समर मोड में एंटर कर रहा है. सो जो मीटरोलॉजी डिपार्टमेंट है उनके अकॉर्डिंग नॉर्थ वेस्टली विंड्स जो है वो एक्सपेक्टेड है और उसके साथ डस्टी कंडीशन. So you are listening Radio All of 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान, शो का नाम लाइफ मस्त है. विजिबिलिटी अब थोड़ी सी लो हो सकती है, आउटडोर ड्राइविंग जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, और वेदर का इंटरेस्टिंग पार्ट ही ये है कि यहाँ पर वेदर सिर्फ टेम्परेचर का गेम नहीं है, थोड़ा सा हवाओं का भी रुख जो है वो बदलता है, लाइफ स्टाइल इफेक्ट होता है उससे. सो आपने नोटिस किया होगा कि डस्टी वेदर में हेडेक होता है, ड्राई आईज हो जाती हैं, इरिटेशन होता है और ज़्यादा फील होता है. तो एक्सपर्ट्स क्या सजेस्ट करते हैं, हाइड्रेशन, सनग्लासेस और मास्क इफ नीडेड. सो मैं आपको बस यही कहूँगी कि समर प्रिपरेशन सिर्फ एसी से नहीं, बॉडी केयर का भी सीजन है. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी, डिहाइड्रेशन ना हो, कोई आईज में ड्राइनेस ना हो, इसके लिए आपको पहले से ही सारी तैयारी जो है वो करके रखनी पड़ेगी. बाय द वे, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान और थोड़ी देर में यहाँ पर हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, बट उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक. माय व्हाट्सएप नंबर इज 3311063. आपके जो वीकेंड है उसके क्या प्लान्स हैं, स्टे ट्यून, जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर song of the hour. Yeah, guys.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31 मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Time check. Brought to you by Nanatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Alkhol.
2: टफ काम और भी आसान, कार्नल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्नल ग्रुप नाउ।
3: ग्रो योर ब्रांड अक्रॉस कतर्स की ऑडियंसेस। कनेक्ट विद हिंदी लिसनर्स ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मलयालम ऑडियंसेस ऑन रेडियो सुनो 91.7 FM एंड अरबिक लिसनर्स ऑन तत्कार 107.4 FM। ऑन एयर विजिबिलिटी सपोर्टेड बाय परफॉर्मेंस ड्रिवन डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स। सिंपल, इफेक्टिव, इंटीग्रेटेड। कॉल 3009-1063 और 3082-1063।
4: सलाम, प्रणाम, नमस्कार, वणक्कम। मैं हूं जैकी श्रॉफ, रेडियो ऑलिव, बोलो बिंदास।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।

यार मुझे लगता है कि हर वीकेंड पर मॉल जाना जरूरी तो नहीं है, कभी कभी सिंपलेस्ट प्लान जो है वो बेस्ट फील करवाते हैं। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। आज थर्सडे, आई एम श्योर आपके फ्रेंड्स के मैसेजेस और कॉल्स आना स्टार्ट हो गए होंगे कि भाई शाम को कहाँ जाना है, क्या प्लान करना है, कौन सी जगह पर डिनर करना है। इन बिटवीन आई विल से कि भाई मॉल जाना हर बार जरूरी तो नहीं है, थोड़ी सी लेट इवनिंग कॉर्निश ड्राइव कर सकते हो, ठंडी हवा ले सकते हो, चाय पी सकते हो और स्काईलाइन को आराम से यू नो बैठ के फील कर सकते हो। मतलब ये एकदम फ्री थेरेपी जैसे काम करता है। और इस हफ्ते मैंने आपसे एक बार ना ऑक्सीजन पार्क के बारे में भी बात की थी, यू कैन चेक आउट दैट ऑल्सो। सनसेट टाइम पर वहाँ पर एटमोसफेयर जनरली बहुत काम और बहुत अच्छा होता है, सो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप इंडोर बैठना चाहते हो कहीं अच्छी जगह पर, सुकातर नेशनल लाइब्रेरी विजिट कर लो यार, मेंबरशिप इस टाइम पर टोटली फ्री है। बाय द वे वीकेंड जो है वो प्रोडक्टिव भी फील होगा और पीसफुल भी। और ऑनेस्टली बेस्ट वीकेंड्स जो है वो एक्सपेंसिव नहीं होते, वो होते हैं जब आप अपने साथ थोड़ा सा टाइम बिताते हो। और अगर आप कोई मूवी देखने का प्लान कर रहे हो तो वो भी एक बहुत अच्छा आइडिया हो सकता है। बाय द वे इस वीकेंड मैंने भी सोचा था कि कुछ अच्छा देखूंगी, कल मैंने OTT पर एक पुरानी मूवी देखी, वी विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। बेस्ट वीकेंड वो होता है ना जहाँ पर आप मेंटली बहुत लाइट फील करो। सो दोस्तों के साथ तो ऑफकोर्स हर कोई बहुत अच्छा फील करता है, तो आप मुझे बताओ कि इस वीकेंड आपके क्या प्लान्स हैं। 3311063 is my number. You are listening Radio Olive. Stay tuned. Jio Bindas. Awesome. Radio Olive par aane wala gaana cool song of the

तो काफी टाइम पहले एक मूवी रिलीज हुई थी जो मैंने देखी नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो भाई रात का टाइम है और नींद अभी आ नहीं रही है तो एक मूवी देखते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। बाय द वे वो मैंने आधी देखी है, पूरी नहीं देखी, और आधे के बाद मुझे थोड़ी सी नींद आना स्टार्ट हुई और मैंने फोन को रखा साइड और फटाफट से सोने की कोशिश की। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। सो बेसिकली मूवी का नाम है एक चतुरनार, और ऑनेस्टली ये रियलाइज हुआ कि कल कॉमेडी फिल्म्स कितनी जरूरी होती है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में टाइम पास मस्त हो रहा था, बाद में फिर थोड़ा थोड़ा यू नो चीजों को कॉपी किया गया है डिफरेंट डिफरेंट मूवी से, फिर उसको बहुत स्ट्रेच किया जा रहा था, बट स्टार्टिंग वॉज गुड। लाइट मूवी थी, लाइट कॉन्टेंट था, यहाँ पर डेडलाइंस, ट्रैफिक, नोटिफिकेशन, स्ट्रेस, दिन भर ये सब रहता है, तो मुझे लगा कि भाई अब थोड़ा सा कॉमेडी जरूरी है। और फिर रात को घर पर थोड़ा सा यू नो अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना, अच्छी मूवीज देखना, इसका मतलब इससे अच्छा तरीका और क्या ही हो सकता है। सो आई वॉच दैट मूवी एंड इट वॉज सच अ नाइस मूवी, मतलब स्टार्ट करा मैंने और मुझे अच्छी लगी। बाय द वे विच मूवी और सीरीज यू आर वॉचिंग दीज डेज, और आज तो वीकेंड भी है तो बताओ मुझे, कोई अच्छा आइडिया दो कि आप कौन सा जो मूवी है या सीरीज है जो अभी देख रहे हो जो आपको लगता है कि सबको देखना चाहिए। नंबर इज 3311063। मैं हूँ मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: Yes. This is the time when I have to say कि मुझे जाना होगा, पर कल फ्राइडे है. आई एम श्योर आपके बहुत सारे प्लान्स होंगे. यू मस्ट बी वेरी हैप्पी. और कल फ्राइडे को शाम को मैं टेक टॉक लेकर आऊँगी, जहाँ पर वी टॉक अबाउट टेक्नोलॉजीज. सो इसी के साथ अब बात करते हैं आज की लास्ट थॉट की. सो वो ये है कि कभी कभी ना पीस मिलता नहीं है, उसके लिए इंटेंशनली थोड़ा सा स्लो होना पड़ता है. हम हर चीज़ फास्ट करना चाहते हैं, रिप्लाइज, सक्सेस, हीलिंग, बट एक्चुअली कभी कभी स्लो होकर चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो पाती हैं. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ शो का नाम लाइफ मस्त है. लेकिन यहां पर बात करते हैं फ्लावर्स भी, मतलब जो फूल होते हैं वो भी सीजन के अकॉर्डिंग ब्लूम करते हैं, प्रेशर के अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं करते. तो आप भी अब काम वैसे ही करिए जो आपको मन करे, अपने मूड के हिसाब से. मतलब ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके बॉस आपसे गुस्सा हो जाए और आपको काम देना ही बंद कर दे और आपकी जॉब पर प्रॉब्लम आ जाए, बट स्टिल यू हैव टू फाइंड आउट कि भाई कौन सा टाइम जो है वो आपको सूट कर रहा है काम करने के लिए और कौन सा टाइम पर आपको थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाना चाहिए. बाय द वे, दिस इज टाइम जब मुझे आपसे कहना होगा कि कल मिलते हैं शाम को टेक टॉक लेकर. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, वीकेंड को अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए. Radio Olive. Stay tuned. Jio Bindas.
1: Radio Olive Par.
2: Fresh, fresh, fresh, fresh, fresh. Ye gana fresh.
1: Fresh song of the hour.
2: Ye gana.

0: है कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM।
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31 मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
2: Hi guys, this is Vani Bhanushali.
3: Hey, this is Liana De Cruz.
4: This is me, Ritik Roshan.
5: Hi, I'm Alia Bhatt.
6: Hi, मैं हूँ विवेकानंद ओबरॉय and you're listening to Radio Olive, Jio Bindas.

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ। ऑलिव म्यूजिक मैराथन, एक घंटा नॉन स्टॉप बैक टू बैक।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पांसिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
3: कमर्शियल बैंक वी आर सेविंग मोर टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम बिगर

0: तनिषा तनिषा अरिजीत सिंह की आवाज में कबीरा ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम तनिषा के जी आपके साथ ऑलिव रिचार्ज लेकर अ वेरी गुड आफ्टरनून मेरी जान। थर्सडे का दिन है, मई 7th, खुश तो बहुत हो गए, तो मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि विंगेट आ गया जी, सोने को मिलेगा ढेर सारा। ऐसा हर बार मैं सोचती हूँ और आपको पता है हर बार नाकाम हो जाती हूँ।
1: देखो जरा देखो नाम तेरा लिखा।
0: ब्यूटिफुल ट्रैक एंड अमेजिंग मूवी, इफ यू हैवंट वॉच्ड इट येट नेटफ्लिक्स पे है, इस वीकेंड पर देख ही डालो। अखिल की आवाज में ये फुल नॉस्टैल्जिक हिट देता हुआ कमाल का गाना और साथ में
2: क्यों आजकल नींद कम ख्वाब ज्यादा है, लगता खुदा का कोई नेक।
0: एब्सोल्युटली ऑपोजिट, नींद बहुत ही ज्यादा है भाई साहब।
3: जरा सा झूम लूं मैं,
4: अरे नारे नारे ना,
3: जरा सा घूम लूं मैं,
4: अरे नारे नारे ना।
0: बिल्कुल जी, वीकेंड आ गया, अब ये सब तो होना ही है, इंजॉय करना है फुल ऑन। लेकिन फिलहाल हमने करनी है ढेर सारी बातें। आपने बताना है मुझे कि आप कैसे हैं। 3311 1063 पर मैसेज कीजिए एंड बताएं कैसे हैं, हाउ हैज द डे बिन सो फार, व्हाट्स द मूड फॉर दिस थर्सडे एंड वीकेंड के क्या प्लान्स हैं, सब जानना चाहती हूँ। फटाफट से आ जाओ, यू कैन ऑल्सो कॉल बाय द वे 4444 1063 पर एंड स्टे ट्यून्ड टू रेडियो ऑल अप जियो बिंदास।

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
3: कमर्शियल बैंक वी आर सेविंग मोर टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम बिगर

0: तनिषा
1: तनिषा अरमान खान की आवाज में ब्यूटीफुल ट्रैक कबूल है फ्रॉम द मूवी हक. इफ यू हैवंट वॉच्ड इट, डू वॉच इट. यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम. तनिषा आपके साथ ऑलिव रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर. एंड टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट द कॉफी कप थ्योरी. नाउ व्हाट इट सेज कि आपके हाथ में एक कॉफी का कप है, ठीक है, उसके अंदर कॉफी है. आप चल के जा रहे हो और आप किसी से टकरा गए. अब आप टकराएंगे तो आपके कप में से कॉफी स्पिल हो गई है ना. तो वो इसलिए स्पिल नहीं हुई है क्योंकि वो सामने वाला इंसान आपसे टकरा गया या फिर आपने ध्यान नहीं दिया, आप टकरा गए. नहीं, वो इसलिए स्पिल हुई है क्योंकि आपके कप में कॉफी ही थी, तो कॉफी ही स्पिल होगी, टी थोड़ी ना निकलेगी वहां से. सेम वे वेन एवर वी गेट एंग्री और कोई भी इमोशन हम फील करते हैं तो जो भी हमने सप्रेस करके अपने अंदर रखा होता है ना, इफ इट इज एंगर, इफ इट इज सैडनेस, तो कई बार जब हम गुस्सा होते हैं तो हम चिल्लाने लग जाते हैं बिकॉज हमने वो एंगर सप्रेस करके रखा था. फिर कई बार हम गुस्सा होते हैं तो हम रोने लग जाते हैं क्योंकि वो सैडनेस सप्रेस करके रखी थी. तो अंदर जो भी है वही बाहर निकलेगा. सो लेट्स ट्राई एंड फिल आवरसेल्व्स विद ऑल द हैप्पीनेस एंड ऑल द पॉजिटिव थॉट्स. होता है कभी कभी गुस्सा भी आता है, कभी कभी सैड भी होते हैं, पर उसको ओवरपावर नहीं करने देना है. बस यही है. हाँ जी, सेंडिंग कूल सॉन्ग ऑफ द आवर. स्टे ट्यून्ड ऑन जियो बिंदास. Cool song. Radio Olive par aane wala gaana cool song of the hour. Song of the
2: hour. Kya baat hai sir? Kya baat? Ye baat hai. Cool song.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
2: ओनली लगा और हो जा रिचार्ज. ओनली रिचार्ज.
3: ओनली रिचार्ज. रेडियो ओलिव 106.3 एफएम पर. जियो बिंदास.
2: ओनली रिचार्ज.
4: With Homes R Us, we complete your home.
1: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
5: Commercial Bank, we are saving more, turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream. Dream bigger.

KK की आवाज में क्या मुझे प्यार है फ्रॉम द मूवी बोलम है ओनली ऑन रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM दिनेश आपके साथ ऑल एवरी चार्ट चल रहे हैं यहाँ पर. और वेदर की बात करें तो देखो वीकेंड आ गया है तो मौसम भी सुहाना हो गया है. अभी बीच में बहुत ऐसे गर्मी लगनी शुरू हो चुकी थी राइट, बट अभी वीकेंड पे थोड़ा डस्टी वेदर रहेगा और फ्रेश से लेकर स्ट्रॉन्ग विंड्स की संभावना भी है. सो वाइल ड्राइविंग बी वेरी वेरी केयरफुल, ध्यान रखिएगा अपना, आराम से चलाना है, कहीं पहुँचना है तो थोड़ा जल्दी निकल जाइए ठीक है, बट ऐसे बहुत स्पीड में ड्राइव नहीं करना है, फोन्स वगैरह यूज नहीं करना है. आप इम्पोर्टेंट हो मेरी जान, अपना ख्याल रखा करो, समझ रहे हो बात को. बाकी बढ़िया गाने यहाँ पे मैं चला रही हूँ, बने रहो मेरे साथ. मैसेज कर दो कैसे हो, क्या हाल चाल है और कहाँ से सुन रहे हो. 3311 1063 पर स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास.

0: are listening to your favorite radio station, Radio Olive 106.3 FM.
1: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
0: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
1: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
0: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
1: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Only laga aur ho ja recharge.
1: Olive Recharge, Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas.
3: Olive Recharge.
4: In association with
5: Homes Are Us, we complete your home.
6: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
2: Commercial Bank, we are saving more, turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million rials dream. Dream bigger.

0: हमेशा।
1: गहराया मूवी से डूबे ओनली ऑन रेडियो 106.3 FM तनिषा आपके साथ ऑल एवरी चार्ट चल रहा है यहाँ पर। और देखो 9th ऑफ मे को मतलब दो दिन बाद आमिर कप का फाइनल है खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में शाम 5:30 बजे। उसके लिए मेट्रो लिंक बस रूट की जो अपडेट्स हैं वो भी आ चुकी हैं। सो ड्यू टू रोड क्लोजर्स जो मेट्रो लिंक रूट्स हैं वो थोड़े से चेंज हुए हैं। सो मैं बता देती हूँ आपको, इंस्टेड ऑफ स्पोर्ट्स सिटी ये ऑल्टरनेटिव स्टेशंस हैं आपके पास ऑप्शन में। M310 जो बस है That will operate from Alwab QLM station exit 1 and M311 will operate from Al Sudan bus station and M317 will operate from Alwab QLM station exit 2. ठीक है, सो ख्याल रखिएगा इन चीज़ों का। एंड बुकिंग्स टू एंड फ्रॉम स्पोर्ट्स सिटी स्टेशन विल बी सस्पेंडेड ऑन 9th ऑफ मे। सो

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
3: कमर्शियल बैंक वी आर सेविंग मोर टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम बिगर

You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha, आपके साथ नीरज श्रीधर की आवाज में हल्के हल्के फ्रॉम द मूवी हनीमून ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड से सुना आपने. एंड डुगोंग एडवेंचर वर्ल्ड जो चल रहा है अभी आउटडोर थीम पार्क 900 पार्क में ये हो रहा है, जहाँ पे ढेर सारी राइड्स हैं, लाइव शोज हो रहे हैं, परफॉर्मेंसेज हैं, मैस्कॉट्स हैं और बहुत सारी इंटरैक्टिव एक्टिविटीज भी हैं हर एज के लिए, बड़ों से लेकर बच्चों के लिए, सब के लिए वहाँ पे कुछ ना कुछ है. 9th May तक ही है तो बस दो ही दिन रह गए हैं, फायदा उठा लो अगर अभी तक नहीं गए तो. और वीकेंड भी आ गया तो मौके पे चौका मार ही डालो मेरी जान, ठीक है. यू कैन यू नो एंजॉय फूड कियोस्क ओवर देयर, बहुत सारे वेंडर बूथ्स भी हैं, फेस्टिव एटमॉस्फेयर रहेगा, फुल फैमिली फ्रेंडली एंटरटेनमेंट और मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस सब कुछ वहाँ पे मिलेगा. वीकेंड्स का जो टाइम है थर्सडे से सैटरडे का 4 PM टिल 11 PM. टिकट्स बुक करने के लिए यू शुड गो ऑन स्नूनू एस सिटी और रेडियो ऑलिव के पेज पे पहुंच जाओ. हां जी, वहां कॉन्टेस्ट चल रहा है और सुनते रहिए रेडियो ऑलिव. जियो बिंदास.

लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ है। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हुस्न।

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha, aapke saath Olive Radio chal raha hai ab.
2: Wacky wisdom
1: mein baat karte hain Korea ki. कोरिया में एक बहुत अमेजिंग चीज़ हो रही है जो प्रॉब्लम मैं बहुत जोर से फेस कर रही हूँ, नॉट जस्ट हियर, यू नो एवरी वेयर इंडिया में भी यही होता था. सो आई बाय बनानास, 6 बनानास, ऐसे संडे को मैं बाय कर लेती हूँ और वो पूरा वीक के हिसाब से एक एक बनाना एवरी डे, वैसे ब्रेकफास्ट में यूज़ होते हैं बेसिकली म्यूसली एंड ऑल में डालने के लिए. अब प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अगर सारे राइप हैं तो 2 दिन के बाद बाकी के 4 खराब, बर्बाद, वो नहीं खा सकते. और अगर सारे ही अनराइप हैं तो वो उनको राइप होने में वक्त लगता है. 1 दिन तो चलो खा लिया, अब दूसरा हुआ नहीं दूसरे दिन. तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये कैलकुलेशन में बिठाऊं कैसे. तो कई बार मुझे अलग अलग से ऐसे ढूंढना पड़ता है कि यू नो कल खाने के लिए थोड़ा राइप वाला ले लेते हैं, फिर आगे के लिए थोड़े अनराइप लेते हैं. सो आई हैव टू मेक दैट फुल सेट एंड ऑल. लेकिन कोरिया में पैक ही ऐसा मिलता है 6 दिन का कि यू नो जो आपने आज खाना है वो फुल्ली राइप है, जो आपने कल खाना है उसको 1 दिन लगेगा राइप होने में, परसों वाला 2 दिन लेगा, एंड सो ऑन इट गोज टिल यू नो द 7th डे. 7वें दिन तक जो लास्ट बनाना है वो फुल्ली राइप होगा, ख़राब नहीं होगा, एंड यू कैन यूज़ इट. एंड दैट इज़ ब्रिलियंट, आई लव दैट. एंड आई वॉन्ट कि ये जो आइडिया है, ये जो बनाना पैक है पर डे वाला, ये हर कंट्री में आना चाहिए. बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब. क्या बोलते हो आप, ये प्रॉब्लम आप भी फेस करते हो क्या, बताओ मुझे. 3311 1063 पर एंड स्टे ट्यून्ड टू रेडियो ऑलिव. थ्री बिंदास.

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
3: कमर्शियल बैंक, वी आर सेविंग मोर, टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी। कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम, ड्रीम बिगर।

Chumka. Danisha. Danisha. You're listening to Radio Live 106.3 FM. Tanisha आपके साथ वर्ड जूम का सुना आपने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी से और 25 years के बाद ऑन इरफान खान's 6th डेथ एनिवर्सरी फाइनली रिलीज हो गई है विद्या बालन और इरफान खान साहब की एक मूवी जो बनी थी 25 साल पहले द लास्ट टेनेंट बट वो रिलीज नहीं हो पाई थी फॉर सम रीजन यू नो जो डायरेक्टर है वो बताते हैं कि एक्चुअली वी लॉस्ट द कॉपीज दो ही कॉपी थी उस टाइम पर ऐसे इतना डिजिटाइज्ड सिस्टम नहीं था सो वो दो कॉपी थी एक में फंगस लग गया दूसरा वाला खो गया नाउ आई हैड दोज VCR टेप्स सो एक दिन रैंडमली आई वॉज गोइंग थ्रू माई ओल्ड VCR टेप्स और एक VCR मुझे मिला एंड उस टेप का मुझे लगा कि मेरी शादी की वीडियो होगी लेट मी चेक तो जब मैंने चेक किया तो मुझे ये फिल्म मिल गई एंड आई वाज लाइक अरे वाह पर क्वालिटी के उसमें मैं थोड़ा सा यू नो स्ट्रेस था कि कैसी रहेगी बिकॉज 25 इयर्स अगो वी शॉट दिस फिल्म एंड अभी तो चीज़ें बहुत एनहांस हो गई हैं यू नो द टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम सो एनहांस्ड नाउ तो वैसा पिक्चर क्वालिटी नहीं है बट स्टिल आई वाज लाइक यू नो इरफान का डेथ एनिवर्सरी आ रहा है इससे बेटर ट्रिब्यूट क्या हो सकता है एंड द मूवी इज फाइनली आउट 30th of April को उन्होंने उसे रिलीज किया विद्या बालन को बताया भी नहीं था आफ्टर रिलीजिंग दे टोल्ड हर एंड शी वॉज सो हैप्पी बिकॉज यू नो उनका ये इकलौता काम है इरफान खान साहब के साथ मतलब स्क्रीन शेयर करिए एक और मूवी करी है बट उसमें स्क्रीन शेयर नहीं करी उन्होंने उनके साथ सो शी वॉज वेरी हैप्पी एंड पीपल आर गिविंग सम रियली गुड रिव्यूज तो चेकआउट कीजिएगा अगर मौका मिले तो द लास्ट टेनेंट एंड सुनते रहिए रेडियो ऑल जियो बिंदास

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पांसिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
3: कमर्शियल बैंक वी आर सेविंग मोर टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम बिगर

0: Tanisha. Mika Singh ki awaaz mein 440 volt Sultan movie se only on radio all 106.3 FM. Tanisha aapke saath all every chart chal rahe hain ab.
1: Lame jams.
0: So lame jams ka aaj ka mera sawal ye hai कि छोटी माँ को इंग्लिश में क्या कहेंगे. देखो ये तो बहुत आसान है, ये तो यूं ही आ जाएगा. छोटी माँ को इंग्लिश में क्या कहेंगे ये आपने मुझे बताना है. 3311063 पर मैसेज कीजिए और बताइए या फिर कॉल कर दीजिए 4444106 पर. छोटी माँ को इंग्लिश में क्या कहेंगे. सेंडिंग कूल सॉन्ग ऑफ द आवर इस तपती गर्मी में. इंजॉय करते हैं बॉम्बे वाइकिंग से. जरा नजरों से कह दो. स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास. Cool song. Radio Olive Bird. Aane wala gana. Cool song of the

0: Let's the most awaited safari items for Qatar Riyal 10 2030 is back on all safari outlets. Save big on categories like bakery, fresh food, groceries, household electronics, cosmetics, toys, ready-made and IT, and everything else starting from May 4th. Don't miss out. Visit your nearest safari hypermarket today and get a chance to win 30 best-tuned cars.
1: Safari, world-class shopping experience, Doha, Qatar.
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
2: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
4: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
5: Olive Recharge, Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas.
6: Olive Recharge,
7: in association with
8: Homes Are Us, we complete your home.
9: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा.
10: Commercial Bank, we are saving more, turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream, dream bigger.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31 मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
2: हमने लगा और हो जा रिचार्ज.
3: Olive Recharge, Radio Olive 106.3 FM पर Jio Bindaas.
2: Olive Recharge.
4: In association with
5: Homes Are Us, we complete your home.
1: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
6: Commercial Bank, we are saving more, turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream, dream bigger.

0: Love is all we need. Tanisha.
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha aapke saath Olive Chat chal raha hai yahan par aur lame jams ka aaj ka sawal tha ki छोटी माँ को इंग्लिश में क्या कहेंगे. सबसे पहले सही जवाब दिया है मुझे नागेश जी ने. एंड यस द करेक्ट आंसर इज मिनिमम. एंड नॉट जस्ट हिम, अ लॉट ऑफ पीपल आंसर्ड एंड सबके जवाब सही है. आसान था, कहा था ना मैंने वीकेंड ऐसे बढ़िया नोट पे हमने शुरू करना होता है. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन माई लेमनेस. और अपना ख्याल रखिए, वीकेंड आ गया, बढ़िया तरीके से इंजॉय करना है, काम वाम का स्ट्रेस नहीं लेना है. ठीक है, चिल करो, उसके बाद वीकडे जब आएगा काम का स्ट्रेस तो हमने ले ही लेना है तब. ठीक है, अभी अपना ख्याल रखिएगा, साथ में मेक श्योर कि आप अपने लिए वक्त निकाले वीकेंड पर. स्पेंड सम टाइम विद योरसेल्फ एंड सुनते रहिए रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम. जियो बिंदास मेरी जान.
0: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश ये गाना फ्रेश है. Fresh song of the hour. Yeah.

You are listening to Radio Olive 106.3 FM. टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।

0: रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी।
1: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
2: जॉय आलूकास्ट वर्ल्ड्स फेवरेट जुगर
3: सपोर्टेड बाय होम्स आर अस वी कम

सर सत श्री अकाल, सिमरन कौर यार के साथ। दिल तो कहीं पे छोड़ के नहीं आना आपको, अपने ऑफिस का काम बस ऑफिस में ही छोड़ के आ जाना, और दो दिन ऑफिस का नाम मत लेना, काम का नाम मत लेना, सिर्फ और सिर्फ जो आप चाहते हो बस उसी का नाम लेना। हैप्पी वीकेंड है जी, बधाइयां मचाइयां, बहुत सारे पटाखे वीकेंड आ चुके हैं, सेलिब्रेशन से कम नहीं होता है यार ये। लोगों के लिए बजने वाले हैं, बातें तो ऑफ कोर्स मेरी चलती रहेंगी, बेबी चार घंटे अब रही हैं, जो काम करना है करते रहो, रेडियो ऑन रहना चाहिए क्योंकि जब तक हम हैं तब तक आपको भी होना पड़ेगा यार, मतलब इतनी अटेंशन तो आप मुझे चाहिए चाहिए ना। सो और बताओ कैसा रहा आपका आज का दिन एंड क्या प्लान है आज का। आज वीकेंड भी है। 3311063 पर आपके व्हाट्सएप मैसेजेस भेजिए, इंतजार कर रही हूँ मैं अपनी छोटी छोड़ियों के बिठाओगे।

0: Yes, the most awaited safari items for Qatar Riyal 10, 2030 is back on all safari outlets. Save big on categories like bakery, fresh food, groceries, household, electronics, cosmetics, toys, ready-made and IT, and everything else. Starting from May 4th, don't miss out. Visit your nearest safari hypermarket today and get a chance to win 30 best-tuned cars.
1: Safari, world-class shopping experience, Doha, Qatar.
2: Commercial Bank presents CB 2026 Million Riyals Dream.
3: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
2: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
3: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
2: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा coupon or mega draw ticket.
4: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
5: Namaskar, main hoon R. Madhavan.
6: Hi, this is Bibasha Basu.
7: Hi, I'm Rajkumar Rao.
8: Hi, main hoon Priyanka.
9: Hi, this is Disha Pardi.
5: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM.
10: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
11: सिमरन के साथ
12: जबरदस्त इवनिंग. मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
13: जॉय आलूकास्ट वर्ल्ड्स फेवरेट जुगर
14: सपोर्टेड बाय होम्स आर अस. वी कंप्लीट

गाने की, विकी और विद्या का वो वाला वीडियो का आप ये गाना सुन रहे हैं। इस बदतमीज दिल को मनाना भी क्यों है, इट्स वीकेंड, करने तो उसको अपनी मर्जी यार।

0: हाँ जी सुन रहे हो, फिर मैच चल रहा है उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ओके फाइन, लखनऊ और बेंगलुरु का मैच चल रहा है। लखनऊ ने अभी खेलना स्टार्ट किया है क्योंकि जो बेंगलुरु था वो उन्होंने टॉस विन किया और उन्होंने बोला कि हम फील्डिंग करेंगे भाई, हवा हम जो चाहेंगे हम वो करेंगे। अभी लखनऊ खेल रही है, 2.2 ओवर कंप्लीट होने के बाद स्कोर हो गया 20 और एक भी विकेट अभी तक नहीं गई है। तो आप लखनऊ से या बेंगलुरु से कौन किसको सपोर्ट कर रहा है ये तो बताना बनता है ना दोस्त। यहाँ पे गला फाड़ फाड़ के मैं बताती हूँ आपको अपडेट, तो पता लगना चाहिए यार। 3311063 पर फटाफट से हैप्पी वीकेंड।
1: T20 स्कोर अपडेट presented by
2: Luke's Cafe, sweetness that hits straight to the heart. Dadar ki most loved kulfi ab bilkul paas. Madar Kadim Bakra VFS Global K site, Oak Banafi Metro Kick just next. Instagram pe follow karo and drop by today.
3: Powered by Ahmed Al Maghribi perfumes. Buy 3 get 1 free. Aapne sahi suna. Ahmed Al Maghribi par chal raha hai buy 3 get 1 free offer on all products 15 May tak. This offer is available on all 19 branches.
1: Brought to you by Ibad Sports. Gear up, game on. All your sports needs at one place. Ibad Sports, brand of achievements. Contact 7733-9198.
2: Boundaries hit, flavors ignite. Ab har dish mein lagega desi swad ka tadka with Desi Dhaba. Taste ka real siksa. Desi Dhaba, Bin Mehmood, Tower Mall and Mall of Qatar.
4: Ab suniye, Olive ka zabardast hit.
5: Zabardast hit.

0: Kolkata's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. I'm
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडो ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
3: साथ जबरदस्त इवनिंग. मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
4: जॉय आलूकास वर्ल्ड्स फेवरेट जुगर
5: सपोर्टेड बाय होम्स आर अस. वी कंप्लीट

है ट्यून बेबी। समर विंटर मॉनसून की बात हो रही है तो मौसम की बात कर लेते हैं यार। जी मैं जी सुनियो कि दादी की हाल चाल सत श्री अकाल सिमरन कौर है आपके साथ। इससे पहले कि मौसम की बात करें पांडे जी आ गए।

तो चल रहे हैं, आपके लिए मैच भी चल रहा है। क्विकली मैं आपको मैच की अपडेट जो है वो दे देती हूँ। आज का मैच जो है वो लखनऊ और बेंगलुरु के बीच में चल रहा है। लखनऊ अभी खेल रही है, अब 4.5 ओवर कंप्लीट होने के बाद स्कोर हो गया 56 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और चलो फिर मौसम का हाल मैं आपको बता देती हूँ। सेल्सियस अभी तक का टेम्परेचर है एंड फील्स लाइक 34 डिग्री सेल्सियस। ये हाईएस्ट टेम्परेचर आज 40 डिग्री सेल्सियस था एंड मिनिमम टेम्परेचर होने वाला है 28 डिग्री सेल्सियस। विंड जो है 12 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से चल रही है, ह्यूमिडिटी जो है वो 35% है। सो ये है मौसम के हाल। वीकेंड पे आज क्या कर रहे हो, वो क्या हाल है वो बताओ यार। आपकी हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसी को सुन रहे हैं तो गोभी जैसा मुंह मत बना के रखो यार, मुस्कुराओ।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। गदर की नंबर वन आरजे
2: आरजे सिमरन के साथ।
3: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
4: जॉय आलूकास्ट वर्ल्ड्स फेवरेट जुगर
5: सपोर्टेड बाय होम्स आर अस वी कम

0: क्यूट सा मैशअप है यार, जो कि मैंने आप लोगों के लिए चलाया है. बताना तो बनता है यार, कितने एफर्ट है. अब जो मैं एफर्ट लगा रही हूँ आपके लिए, गाने प्ले कर रही हूँ, लेकिन अगर आप वो गाना सुन रहे तो आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा दोस्त. ऐसे नहीं है कि ये वाला गाना प्ले कर दो, ऐसे थोड़ी होता है दोस्त. आपके साथ देखो यार, एफर्ट तो लगते हैं. अगर आपको आज थर्सडे है, सो वीकेंड पे अगर आप चाहते हैं कि आपका गाना जो है वो प्ले हो, तो आपको थोड़ा सा एफर्ट तो लगाना पड़ेगा. एफर्ट इस तरह से होगा कि आप वो उस गाने को थोड़ा सा गाएंगे, एक दो लाइन गाइए और फिर मुझे भेजिए 3311063 पर. फिर मैं सोचूंगी कि वो गाना प्ले करेंगे, किसी का तो नंबर लगेगा, किसी का तो गाना जो है वो प्ले हुआ. लेकिन ऐसे लिख के भेजेंगे तो मैं गाना नहीं प्ले कर सकती हूँ, आई एम सो सॉरी. ठीक है, और उसके साथ जब आप गाना रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मेक श्योर कि वो वीकेंड की वाइब के साथ मैच होना चाहिए. इवन गाने में दर्द हो लेकिन ढिंचेक जरूर होना चाहिए ताकि मजा आ जाए. ठीक है, 3311063 पर. हैप्पी वीकेंड.
1: What?

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.

0: आपके लिए गाने प्ले करती हूँ, जो भी यू नो आप लोगों के साथ ये चार घंटे बातों बातों में बीतते हैं उसको जब आप अप्रिशिएट करते हो ना, बड़ा सही लगता है यार।
1: आपका ही मैं सब सुन के सिमरन जी हमारा दिल जो है मंत्रमुग्ध हो गया है। ऐसा गाना आप बजाती हैं, दिल की धड़कनें जो है तेज हो जाती है।
0: थैंक यू जी।
1: हमारी बेटी बगल में बैठ के हमारा एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसको कुछ कह नहीं सकते, ऐसा ही गाने बजाते रहिए।
0: थैंक यू जी।
1: जियो
0: बिंदास, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखो, जिसको अगर वीकेंड पे चाहिए कि मैं उनका गाना बजाऊं, तो आप दो लाइन गाने की गुनगुना के भेजिए, गा के भेजिए 3311063 पर, और ट्राई करूंगी कि आपका गाना प्ले करूं। बट मेक श्योर जो गाना आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसमें वाइब थोड़ी सी वीकेंड वाली होनी चाहिए, अपन ने रोना नहीं करना है आज।

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدنا الوسيلة والفضيلة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM।
2: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31 मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू. It's back. Yes, the most awaited safari items for Qatar Riyal 10, 20, 30 is back on all safari outlets. Save big on categories like bakery, fresh food, groceries, household, electronics, cosmetics, toys, ready-made and IT and everything else starting from May 4th. Don't miss out. Visit your nearest safari hypermarket today and get a chance to win 30 best-tuned cars.
3: Safari, world-class shopping experience, Doha, Qatar.
4: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
5: Namaskar, main hu R Madhavan. आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 FM.
6: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
7: आरजे सिमरन के साथ.
8: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
9: जॉय आलूकास्ट वर्ल्ड्स फेवरेट जुगर
10: सपोर्टेड बाय होम्स आर अस वी

सेल्फी लेना मुझे भी अच्छा लगता है, पर सेल्फी लेने वाले के साथ पता क्या कांड होता है कि उसका मुंह जो है वो 5 किलो का आ जाता है, बाकी सब एकदम बढ़िया पोज कर रहे होते हैं, और मेरा हमेशा ऐसा ही होता है। 6:22 पचपन सेकंड स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं।

0: भाई वाह, ये होना था और लेकिन ये क्या हो गया। आज का मैच जो है वो जो चल रहा था और था इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैच जो है वो डिले हो गया है और रेन की वजह से, बारिश ने यहाँ पर आके धावा जो है वो बोल दिया है। लखनऊ में मैच हो रहा है, लखनऊ और बेंगलुरु के बीच में, और 9 ओवर कंप्लीट हुए थे, स्कोर हुआ था 95। जैसे मैच शुरू होगा उसके बारे में तो मैं आपको बताने ही वाली हूँ, लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों ने सॉन्ग रिक्वेस्ट किए हैं सो वो भी करते रहिए। जिस तरह से इन्होंने, चाहे इनसे जितना मर्जी गाया बन पड़ा, इन्होंने गा दिया।
1: हेलो सिमरन जी।
0: हेलो जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी,
1: मेरे लिए अंधाधुन मूवी से ये गाना प्ले करना प्लीज। मेरे दिल के दिल के दिल में है तू। थैंक यू सो मच।
0: बड़ा प्यारा गा दिया यार, जैसे भी गा दिया। तो अगर आप लोगों को भी अब समझ लगी ना कि अगर गाना रिक्वेस्ट करना है तो गाइए, और थोड़ा माहौल बढ़िया होना चाहिए गाने का, ताकि जब रेडियो पे बजे तो पता लगे कि वीकेंड पे बज रहा है। ठीक है, सो 3311063 पे सॉन्ग रिक्वेस्ट करिए, थोड़ा सा गा के अपना नाम जरूर बता दीजिएगा। जी ओ बिंदास।
2: T20 स्कोर अपडेट presented by Luke's Cafe, sweetness that hits straight to the heart. Dadar ki most loved kulfi ab bilkul paas. Madar Kadim Bakra VFS Global ke side, Oak Banafi Metro ke just next. Instagram pe follow karo and drop by today.
3: Powered by Ahmed Al Maghribi perfumes. Buy 3 get 1 free. Aapne sahi suna, Ahmed Al Maghribi par chal raha hai buy 3 get 1 free offer on all products 15 May tak. This offer is available on all 19 branches.
2: Brought to you by Ibad Sports. Gear up, game on. All your sports needs at one place. Ibad Sports, brand of achievements. Contact 7733-9198.
4: Boundaries hit, flavors ignite. Ab har dish mein lagega desi swad ka tadka with Desi Dhaba. Taste ka real siksa. Desi Dhaba, Bin Mehmood, Tower Mall and Mall of Qatar.
5: Cool song.
4: Radio Olive par. Aane wala gana, cool song of the hour.
6: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।
5: Cool song.

0: CB2026 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. गदर की नंबर वन आरजे
3: सिमरन के साथ.
4: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
5: जॉय आलूकास्ट वर्ल्ड्स फेवरेट जुगर
6: सपोर्टेड बाय होम्स आर अस वी कंप्लीट.

निकले थे हम हलवा खाने, मुंह ही जल गया है।

0: सुने होगी तदिकी हालचाल सत श्री अकाल सिमरन कौर आपके साथ। गुड न्यूज ये है कि बारिश रुक गई है और मैच जो है वो शुरू हो चुका है। मैं क्या चीज सुने होगी तदिकी हालचाल सत श्री अकाल सिमरन कौर तड़े नाल। लखनऊ और बेंगलुरु का मैच चल रहा है और लखनऊ अभी खेल रही है। 10.1 ओवर कंप्लीट होने के बाद स्कोर हो गया 99, एक विकेट जो है वो जा चुका है। और जो लोग इतनी शानपत्ती करने की कोशिश कर रहे हैं मेरे साथ की लिख के मुझे भेजेंगे सिमरन योर वॉइस इज सो एडिक्टिव, थैंक यू सो मच उसके लिए। बहुत बहुत प्यार उसमें, वो जो आप प्यार देते हो ना वो तो अलग ही लेवल का है, लेकिन उसके बाद आप लिख के बता रहे हो कि मैं आपके लिए गाना प्ले कर दूं। डार्लिंग आपको रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका लिखा हुआ गाना मैंने प्ले कर दिया तो बेचारे जो लिख रहे हैं उनका गाना भी प्ले होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा, रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा दोस्त। अगर आपको सॉन्ग रिक्वेस्ट करना है तो आपको गाना पड़ेगा, दो लाइन एटलीस्ट गाइए एंड गाना जो है वो वीकेंड के माहौल के हिसाब से होना चाहिए, एकदम चकाचक। भेज दो उसको 3311063 पर। ऑलिव रिवाइंड में आज क्या है
1: सुनो,

0: जो लोग मेरी तरह इंस्टाग्राम फ्रीक है, मतलब जिनको सोशल मीडिया बहुत ज्यादा पसंद है लेकिन मेरे को इतना भी पसंद नहीं कि मैं उसके लिए परेशान हो जाऊं, लेकिन जिनके इतने इतने फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम के, रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे फॉलोअर्स में ड्रॉप हुआ है। मेरे को लगता है कि उन लोगों ने तो चूड़ियां तोड़ ली होंगी यार भाई इतने फॉलोअर्स उनके चले गए। सो यह है, रिसेंटली आपने अगर अपने अकाउंट में नोटिस किया है कि यार अकाउंट मतलब ऐसे फॉलोअर्स कैसे गायब हो गए, तो अभी क्या है कि मेटा की तरफ से उन्होंने किया है कि जो अकाउंट जो है ना, जो इनएक्टिव हैं, आर्टिफिशियल अकाउंट हैं, जो कि मतलब आपको लग रहा है कि फेक है, सो ऐसे अकाउंट को उन्होंने सब ने रिमूव कर दिया। आप छोड़ो, मेरे तो सिर्फ 1000 फॉलोअर्स गए हैं, सिर्फ 1000 फॉलोअर्स गए हैं। काइली जेनर के 14-50 मिलियन फॉलोअर्स जो थे वो निकल गए, ब्लैक पिंक के 10 मिलियन, रोनाल्डो के 8-18 मिलियन जो है वो फॉलोअर्स चले गए, सेलेना के 6 मिलियन, उन्होंने एरियाना ग्रांडे ने 5.5 मिलियन उनके फॉलोअर्स जो हैं वो जा चुके, टेलर स्विफ्ट के 4.15 मिलियन अराउंड जो है, बियॉन्से के 4.4 मिलियन जो है वो फॉलोअर्स जा चुके। सोचो इनके इतने ज्यादा फॉलोअर्स हैं, अब मुझे मेरे 1000 फॉलोअर का गम बिल्कुल भी नहीं लग रहा। ठीक है यार चले गए, बट यस अगर आप ये सोच रहे हो कि यार ये फॉलोअर्स किधर गए, तो किसी ने आपको अनफॉलो नहीं किया है, ऐसे फॉलोअर्स को हटा दिया गया जो इनएक्टिव थे, फेक थे और आर्टिफिशियल, यू नो वही। सो या टेंशन मत लीजिए, ये सभी के साथ हो रहा है, आपके साथ नहीं हुआ। सिमरन कौर है आपके साथ, सी ओ बिंदास रेडियो ऑलिव पर।
1: Song of the Hour. Yeah,

0: Radio Olive, your happiness frequency. 106.3 Radio Olive, Jio Windows. सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danatal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Alkhor.

0: सिमरन कौर है आपके साथ। फैशन के नाम पे आजकल कुछ भी हो रहा है, और फैशन के नाम पे लोग खरीद भी रहे हैं यार चीजें।
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ
0: वेल बैलेंसियागा ने रिसेंटली एक क्रेजी फैशन जो है वो निकाला है, जो ये जो डब्बे रहते हैं ना, क्या कहते हैं अपना, जो हम दूसरे क्या कहते हैं यार, जो जिन डब्बों में हम सामान जो है वो भरते हैं, है ना, वो डिब्बों से बनी हुई लाइक शिपिंग बॉक्स जो रहते हैं ना, उन डिब्बों से बनी हुई उन्होंने एक ड्रेस जो है बैलेंसियागा ने लॉन्च की है, कपबोर्ड स्लिप ड्रेस। ओके, लेटेस्ट है उनका ये, और मैंने देखी इसकी फोटोज, ओ माय गॉड, लाइक इसका मैं आपको बताऊं, ये समथिंग अराउंड $9,000 की है। लाइक सीरियसली, मतलब फैशन मुझे नहीं शायद समझ लगता है, ऐसा फैशन मैं कभी भी अपनी लाइफ में फॉलो नहीं करना चाहूंगी जहां पे ये गत्ते के डब्बों से ड्रेसें बनाई गई हैं और उसके बाद $9,000 दिए जा रहे हैं इसके, उसके बाद इनको रैंप पे लाया जा रहा है, उसके बाद इनको पहनाया जा रहा है। हमारी मम्मियां इसको कचरे में फेंक देती हैं यार, क्या चल रहा है यार बैलेंसियागा। 7:05 55 सेकंड स्टूडियो की घड़ी भी हो चुकी है।

थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो गया, देखें लहू जिगर का दूंगा, हंसी लबों की लाली को, मतलब लिपस्टिक देंगे, लिपस्टिक आप हमने खून की। 7:21 12

0: टॉक्सिक आंसर है यार, आई हेट यू लाइक आई लव यू बेबी. ओके फाइन. सो मैच के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, लखनऊ और बेंगलुरु का मैच चल रहा है, लेकिन बारिश जो है वो चलने नहीं दे रही है. मैच फिर से स्टार्ट हुआ था, 14 ओवर कंप्लीट होने के बाद लखनऊ का स्कोर है 145 एक विकेट जाने के बाद. अभी स्टिल दे आर वेटिंग क्योंकि मैच जो है डिले हो गया है रेन की वजह से. ठीक है, सो जैसे ही मैच स्टार्ट होगा मैं आपको अपडेट देने वाली हूँ, लेकिन आप अपने वीकेंड की अपडेट मुझे दीजिए. क्या कर रहे हो, कहाँ पे घूम रहे हो बताओ मुझे. ठीक है, क्या प्लान है आपका वो भी बताओ मुझे. बाहर की गर्मी अब मुझे पता है, अब ऐसा मौसम है कि हर वीकेंड में अंदर ही कहीं ना कहीं आप रहने वाले हो, हाउस पार्टी करने वाले हो, कहीं पे मॉल में जाने वाले हो, कैफे में बैठने वाले हो. बाहर अब तो कोई नहीं निकलने वाला है, लेकिन बाहर निकलना भी हम कतर में ही कर सकते हैं क्योंकि इतने सारे एरियाज हैं जहाँ पर एयर कंडीशन है. तो एसी की टेंशन जो है ना, वो मतलब एसी ने हमारी टेंशन जो है ना गर्मी की वो मिटा दी है. सो या सिमरन कौर आपके साथ जी हूं बिंदास.
1: T20 स्कोर अपडेट presented by Luke's Cafe. Sweetness that hits straight to the heart. Dadar ki most loved kulfi ab bilkul paas. Madar Kadim Bakra VFS Global ke side Oak Banafi Metro ke just next. Instagram pe follow karo and drop by today.
2: Powered by Ahmed Al Maghribi perfumes. Buy 3 get 1 free. Aapne sahi suna. Ahmed Al Maghribi par chal raha hai buy 3 get 1 free offer on all products 15 May tak. This offer is available on all 19 branches.
1: Brought to you by Ibad Sports. Gear up, game on. All your sports needs at one place. Ibad Sports, brand of achievements. Contact 7733-9198.
3: Boundaries hit, flavors ignite. Ab har dish mein lagega desi swad ka tadka with Desi Dhaba. Taste ka real sixer. Desi Dhaba, Bin Mehmood, Tawar Mall and Mall of Qatar.
4: Ab suniye, Olive ka zabardast hit.
5: Zabardast.

0: Radio Honest, your happiness frequency.
1: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Dana Dal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Al Khor.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ।
4: Zabardast evening make you drive golden with
5: Joy Alukas, world's favorite jeweler,
6: supported by Homes R Us. We complete

0: हाँ जी, इश्क समंदर दिल दे अंदर, बेबी दमा दम मस्त कलंदर, क्या बात है यार, राइम कर दिया मैंने। और कुछ गाने जो है वो आप लोग भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं।
1: हेलो सिमरन,
0: हेलो, वेरी गुड इवनिंग।
1: प्लीज प्ले द सॉन्ग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 फ्रॉम तेजाब मूवी, प्लीज प्ले दिस सॉन्ग।
0: क्या बात है यार, आपकी कोशिश को तालियां है यार। इसी तरह से तो गाना आपको रिक्वेस्ट करना होता है, बस ठीक है। जहां पर आपके में कॉन्फिडेंस की कमी लगती है वहां पे आप सारी चीजें जो है छोड़ देते हो, बस गाना एक गा देते हो। मेरे लिए इतना करते हो उतना ही काफी है, लेकिन अगर आप में बहुत सारा कॉन्फिडेंस है और सुर भी है, मेरे में ना वो कॉन्फिडेंस है ना सुर है, पर मैं फिर भी गा देती हूँ, ठीक है। सो अगर आप में दोनों चीजें, तो आप गाना मस्त गाइए और रिक्वेस्ट करिए जो भी गाना आप सुनना चाहते हैं, बट मेक श्योर कि गाना वीकेंड के वाइब के हिसाब से होना चाहिए। एंड वाइब एक बार फिर से स्टेडियम में सेट होती हुई नजर आ रही है। लखनऊ और बेंगलुरु का मैच है और बारिश रुक चुकी है और मैच एक बार फिर से शुरू हो गया है। सो या 14.3 ओवर कंप्लीट होने के बाद स्कोर है 148, एक विकेट का नुकसान लखनऊ का है ये स्कोर। जियो बिंदास, आलोचको जी।

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدنا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: راديو أوليف 106.3 Radio Olive. Geo Bindas.
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
2: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे
5: आरजे सिमरन के साथ।
6: Zabardast evening, make you drive golden with
7: Joy Alukas, world's favorite jeweler.
8: Supported by Homes R Us, we complete your home.
9: On the number one radio,
10: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
11: आज सुबह जब मैं ऑफिस के लिए रेडी हो रही थी, तो मैं हमेशा गाना गाने म्यूजिक जो है ऑन रहता है। ये गाना आया यार, इसके लिरिक्स मैंने बहुत ध्यान से सुने, कितना प्यारा गाना है यार ये।

0: ठीक है जी। आप लोग मीना क्या क्रेजी मैसेजेस भेजते हो।
1: ओए ओए, अरे सिमरन जी,
0: हाँ जी,
1: हमारी भी फरमाइश का गाना बजा दो भाई। कल तो हॉलीडे है
0: बाबू जी,
1: हम तो सुनना चाहता हूँ महबूबा महबूबा। Hey Simran ji, can you play please this song Mehbooba Mehbooba ooh।
0: ये आपका ooh बापू जी, मैं डर गई, आपका गाना जरूर प्ले होगा। Simran Gauri आपके साथ, जियो बिंदास, enjoy your weekend, happy weekend।

0: हिट रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM.
1: टफ काम और भी आसान. कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स. मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले. विजिट कार्मल ग्रुप नाउ.
0: यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM.
2: देखो इस गाने को सुनते सुनते अगर आपको किसी की याद आई तो यू आर नॉट लकी. वो लकी है जिसकी याद आई है यार आपको.

0: रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी।
1: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
2: जॉय आलूकास वर्ल्ड्स फेवरेट जुगर
3: सपोर्टेड बाय होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

0: hear this.
1: Radio Olive 106.3 FM. You're listening to Club Olive.